मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 53 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया

0: कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

भारतीय संस्कृति में प्रातः काल को मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि के लिए उपयुक्त समय माना गया है। सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण और वंदन करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता मिलती है। तो आइए हम भी करते हैं सभा की शुरुआत कार्यक्रम आराधना से, जो कि भक्ति रचनाओं पर आधारित होता है। मंगल के स्वरूप पवन पुत्र हनुमान, आप हमारे जीवन के सभी अमंगलों, कष्टों, भय, संकटों और बाधाओं का नाश करके हमारा कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त एकनिष्ठ भाव से ईश्वर का स्मरण और उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम यानी आवश्यकताओं और कल्याण का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। भक्ति का संदेश ये नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि ये है कि ईश्वर स्मरण से व्यक्ति को संकटों का सामना करने का साहस, धैर्य, विवेक और आशा मिलती है। यही शक्ति उसे कठिन समय से पार ले जाती है। हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि, शक्ति और धैर्य प्रदान करें कि हम जीवन की चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक कर सकें और सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हम सभी का कल्याण करें। मन में सद्भाव हो, सत्य के पथ पर चलना हमें सिखाएं। ज्ञान, विवेक और शक्ति दीजिए। सेवा का भाव हर हृदय में हो। दुखियों के दुख हरने की प्रेरणा मिले और सबके प्रति प्रेम और करुणा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विचार बिंदु। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के विचार।
1: स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जैसे नारे के जरिए देश की जनता को झकझोरने वाले महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता

0: थे। आपने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। आपको आदर से पूरे संसार में लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद के जनक कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक, आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। तिलक जी अंग्रेजी शिक्षा के घोर विरोधी थे और वो मानते थे कि ये भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। आपने भारतीय शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास से दक्खन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। तिलक जी लाल बाल पाल की महत्वपूर्ण त्रिमूर्ति में से एक हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता के विरुद्ध देश की जनता के बीच बिगुल बजाने का काम किया। केसरी में छपने वाले अपने लेखों की वजह से आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य इनकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपने समाज सुधार की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। बाल विवाह के तिलक जी सख्त विरोधी थे। बाल गंगाधर तिलक नए सुधारों को निर्णायक दिशा देना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही 1 अगस्त 1920 को बंबई में आपने प्राण त्याग दिए। मरणोपरांत महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा। तिलक जी की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपको श्रद्धांजलि देने के लिए लगभग 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। बाल गंगाधर तिलक का ये बलिदान हमें सदा सदा इस बात का स्मरण कराता रहेगा कि हमारी आजाद सांसें आपके जैसे ही उन तमाम वीर सपूतों की देन हैं जिन्होंने देश की माटी से अपना तिलक किया और इसी माटी के लिए अपने प्राणों को भी समर्पित कर दिया।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे बाल गंगाधर तिलक के विचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर एस डी मैकार्टी से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत।
1: किसान भाई, आप सब में बहुत से लोग खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, कुछ लोग अपने घरेलू उपभोग के लिए, कुछ लोग व्यावसायिक स्तर पर, लेकिन निश्चित रूप से चाहे वो खेती किसानी हो

0: जब तक वैज्ञानिक ढंग से ना हो फायदा ना हो, तो वही तरह से भैया अगर पशुपालन भी वैज्ञानिक तौर तरीका से न कैल जाए, मौसम के हिसाब से उनका रख रखाव ठीक से न कैल जाए, तो निश्चित रूप से पशुपालक भाइयों के फायदा न मिली। आज जो उन बातचीत का विषय हो दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल, जानकारी देवदे हमारे बीच में विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर SD मैकार्टी आयल बटे। आप पशुपालन विभाग से जुड़ल बटे और समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र मान्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद नैनी से आयल बटे। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत हो। जैसन कि अपने देश में बहुत से पशुपालक भाई बाटे जो उनकी बड़े पैमाने पर भी पशुपालन करते हैं, बहुत से लोग अपने दो चार गाय और भैंस रखते हैं भाई अपने उपयोग बदे, ऐसे में गर्मी के मौसम में खास तौर से दुधारू पशु हों, चाहे वो गाभिन पशु हों या उनके बछिया बछड़ा हों, उनका रख रखाव कैसे किसान पशुपालक भाई करें जो उन्हें से उन्हें लाभ मिले, क्रम से आप
1: सबसे
0: बताएं।
1: पहले तो आपका नमस्कार और हमारे किसान भाइयों को नमस्कार। इस गर्मी के मौसम में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इलाहाबाद जो है वो
0: जी
1: चारों तरफ जो है वो नदियों से घिरा हुआ है,
0: जी जी
1: त्रिवेणी संगम जो है वो त्रिवेणी चारों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण बालू की वजह से गर्म सबसे ज़्यादा है।
0: जी जी
1: अभी मंगल को जो है 47 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ
0: जी
1: था।
0: जी
1: तो इसमें सबसे पहले हम उन विषयों पर बात करेंगे जिससे गर्मी का तनाव हमारे पशुओं पर पड़ता
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो इसमें दो तरह के पशु हमारे किसान भाई पालते हैं, जैसे कि एक गाय है और एक भैंस है।
0: जी
1: तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि हमारे गायों में जो है वो पसीना आता है,
0: जी जी
1: और पसीने की वजह से, पसीना आने से गाय जो है जब उनके ऊपर गर्मी का प्रकोप पड़ता है
0: जी जी
1: तो उनके बदन के अंदर से पसीने के रूप से कुछ पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं, और वो पानी की बूंदें जब बाहर आती हैं तो वो बॉडन बदन के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: लेकिन यही कार्य जो है वो भैंस में नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि भैंस जो है एक तो रंग की काली होती
0: जी
1: है,
0: जी हाँ
1: तो वो जो गर्मी है वो अपने अंदर खींच लेती है और बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसके बदन में वो पसीने निकलने वाली छिद्र नहीं होते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो इसके कारण उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा सा रख रखाव में अगर व्यवस्थित तरीके से किया जाए
0: जी
1: तो इस वक्त गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव पशुओं के बच्चा देने पे, उनके दूध पर, इन सभी पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
0: जी जी
1: तो मैं एक पहली चीज़ बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि पशुओं का जो बदन में जो उनका तापमान बढ़ता है वो
0: जी
1: किस स्तर पे जाके उनको असर करता है। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि 24 से लेकर के और 29 डिग्री टेम्परेचर तक हम बहुत सामान्य रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि मनुष्य भी जो है वो एक पशु का ही
0: जी जी
1: लेखा है। तो
0: डॉक्टर साहब
1: इसलिए
0: थोड़ा सा हम इस विषय से बदल चाहते हैं कि
1: जी
0: दुधारू और गाभिन पशु दो हैं,
1: जी
0: तो आप दुधारू और गाभिन अलग अलग बताएं आप थोड़ा सा।
1: हाँ, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम 38 डिग्री टेम्परेचर से 38 डिग्री टेम्परेचर से जब ऊपर जाता है हमारा टेम्परेचर, तब जा करके तनाव जो है हमारे पशुओं पे दिखाई देने लगता है,
0: जी
1: और वो तनाव जो है पशुओं का वो आपको देखने को मिलेगा कि उनके खून का बहाव बहुत तेज हो जाता है,
0: जी
1: उनकी जो धमनियां हैं बहुत तेज, उनकी नाड़ी जो है बहुत तेज चलने लगती है, और वो भोजन कम उठाते हैं,
0: जी
1: और पानी के पास जो है पानी पीने में वो ज़्यादा अपना समय निकालने लगते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो और दूध में भी कमी आ जाती है। तो
0: जी
1: ये सबसे बड़ी कमी जो हमारी है पशुओं में वो दूध की कमी है,
0: जी
1: जिसकी वजह से किसान जो हमारा पशुओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस संबंध में हम कुछ बच्चियों से शुरुआत करेंगे कि बच्चियों की इस गर्मी के मौसम में किस तरह से देखभाल करनी
0: बिल्कुल जी
1: चाहिए।
0: बताओ।
1: तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि बच्चियाँ जो होती हैं हमारी, वो बच्चियाँ आगे चल करके गाय बनेंगी
0: जी
1: जब वो बच्चा देंगी, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य, उनका बदन सही रहे तब तभी वो अच्छी गाय बन सकती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: ओकरे लिए संतुलित आहार की जरूरत हुई।
1: बहुत जरूरी चीज आपने बोली है कि संतुलित आहार तो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना ये गर्मी का तनाव भी नहीं दूर हो सकता है।
0: जी
1: तो सबसे पहले जैसे कि हम प्रोटीन देते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन इसमें जो है गर्मी के तनाव में क्या होता है कि प्रोटीन से ज़्यादा हमको एनर्जी देने की
0: जी
1: ज़रूरत होती है।
0: जी
1: अब वो एनर्जी जो है हम अलग अलग स्रोतों से दे सकते हैं,
0: जी
1: जैसे कि हम गाय को और दुधारू गाय को या भैंस को जो हम चारा देते हैं, जैसे
0: जी
1: अभी
0: जी
1: आपने संतुलित आहार की बात करी, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो गाभिन हो और चाहे वो बछिया हो, चाहे वो हमारे बैल हो, इनके लिए हम एक मापदंड रखते हैं जिसके तहत जो है हमको चारा जो है किस जानवर

0: जानवरों को देना पड़ता है। उसमें सबसे जरूरी है हमारा हरा चारा
1: जी।
0: जो हरा चारा एक पशु को हम देते हैं 15 से 20 किलो प्रतिदिन, 15 से 20 किलो हरा चारा, उसके साथ 4 से 5 किलो भूसा और उसके साथ संतुलित आहार 2 से 3 किलो। संतुलित आहार का मतलब होता है, एक गोली के रूप में मार्केट में आता है जो दाना इनका, उसी दाने को संतुलित आहार कहा जाता है। वो संतुलित आहार ये माना जाता है कि 3 किलो दूध में, 3 किलो दूध जो दे रही है गाय, उसके 3 किलो दूध में जो पोषण तत्व निकल करके उसके बदन से जाते हैं वो 1 किलो राशन से पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए संतुलित आहार सबसे महत्वपूर्ण है। और दुधारू गायों के अलावा जो हम बच्चियों की बात कर रहे थे, बच्चियों को सबसे पहले आप खुले में बांधें, जैसे कि पेड़ वगैरह होता है उनको शेड में नहीं बांधना चाहिए। और
1: रहन सहन भी बहुत जरूरी है संतुलित आहार के साथ। तो गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं या गाभिन पशु, उनके रहन सहन कैसे होना चाहिए, आवास कैसे होना चाहिए?
0: रहन सहन तो ये समझ लें कि रहन सहन पे ही पूरा हमारा जो है गर्मी जो है निर्भर करता है। खाना तो ये है कि खाने से उसका बदन स्वस्थ रहता है, लेकिन रहन सहन कुल अगर हम बात करें तो रहन सहन में क्या होता है कि जब हम उसको फ्री छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं और पेड़ों के नीचे उनकी व्यवस्था करते हैं या चारों तरफ से खुला रहता है, तो हवा का आवागमन चारों तरफ से आना जाना होता रहता है जिससे कि गर्मी कम हो जाती है। परंतु एक जगह जब हम उनको बंद कर देते हैं किसी कमरे में तो उस जगह पे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है।
1: या तो बिजली पंखा की व्यवस्था हो,
0: या बिजली पंखा की व्यवस्था हो, तो गाँव में हमारे यहाँ बिजली पंखा की व्यवस्था उतनी हो नहीं पाती है। तो हम चाहते हैं कि किसान भाई हमारे जो हैं उनको खुले में जो हैं रखें, और खुले में रखने के साथ साथ जिस तरफ से जब बहुत ज़्यादा सूखी गर्मी पड़ती है तब उसमें व्यवस्था ये करनी चाहिए कि टाट जो होता है, जो बोरा होता है, उस बोरे को लेकर के उसको खोल करके और उसके बदन पर डाल दें और दिन में कम से कम 2 बार उनकी धुलाई करें।
1: जी जी।
0: 2 बार कम से कम उसको नहलाएं जिससे कि उनके बदन का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारी बच्चियों की देखभाल जो है वो हो जाती है। और दुधारू गांवों में जो है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि 2 से 3 लीटर दूध देने वाली जो गायें हैं उनमें 1 किलो संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है
1: जी।
0: बिना इस संतुलित आहार के उनका बदन जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, और अगर बदन स्वस्थ नहीं रहेगा तो उनको गर्मी लगेगी।
1: डॉक्टर साहब ये बताओ कि गर्मी में बीमारी चाहे आदमी हो चाहे पशु हो, ये बहुत प्रकोप रहा है मौसम के हिसाब से, तो ऐसे में जो दुधारू पशु बटे या गाभिन पशु हैं उनकर चिकित्सकीय मतलब देखभाल कितना आवश्यक हो?
0: देखिए गर्मी में बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहती है तो उस वक्त बीमारियों का प्रकोप थोड़ा सा कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और इसके बाद जब बरसात आती है तब उसके बाद बरसात जब आती है तब उसके बाद जब ह्यूमिड होता है तब उसमें जो है गर्मी की जो है व्यवस्था उसमें बीमारियों की जो है वो ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इस वक्त गर्मियों में सिर्फ यही है कि उनको ठंडा पानी, स्वच्छ पानी पिलाएं और पशुओं को अपने ठंडे से ठंडी जगह पे रखें जिससे कि इस गर्मी के तनाव से।
1: डॉक्टर एस डी मैकार्टी साहब, आप दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल पे अपने पशुपालक भाई के बहुत अच्छी जानकारी देना, आपकी जानकारी देव दे बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे दुधारू एवं गाभिन पशुओं की देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर एस डी मैकार्टी से जयकृष्ण नारायण शर्मा की बातचीत।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता, गर्मी के मौसम में शिशुओं

0: की देखभाल।
1: आज की वार्ता का विषय है गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। ये गर्मी का मौसम हम सभी जानते हैं कि हम सभी लोगों को बहुत परेशान करने वाला है, इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम शिशुओं की क्या विशेष देखभाल रख सकते हैं, इस बार पे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि वातावरण कैसा हो, हमें शिशुओं के लिए एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें कि कम आर्द्रता या नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, थोड़ी सी कम रहे और हवादार हो। अमूमन ऐसे कमरों में रखें जहाँ का तापमान 24-25 डिग्री के आसपास बना रहे। आर्द्रता अगर 80-90% के आसपास रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, और हवा का फ्लो बना रहे, पंखा चलता रहे या कूलर संभव हो तो कूलर चलता रहे। जो लोग एयर कंडीशनर को अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के अमूमन देखा जाता है कि वो लोग बहुत टेम्परेचर नीचे गिरा देते हैं, उसके बाद 18-19 पे और फिर कंबल ओढ़ के सोते हैं, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। कभी भी अपने कमरे का तापमान 24 डिग्री से नीचे ना जाने दीजिए, नहीं तो पंखा जरूर चला के रखें और हवादार कमरे में रहें जिसमें खिड़कियाँ प्रॉपर हों। उसके बाद उस मेन चीज़ आती है कपड़े कैसे पहनाए जाएँ। सब एक शिशुओं का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सूती कपड़े पहनाएं क्योंकि वो पसीना सोखने की क्षमता रखते हैं।

0: के लिए एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें कि कम से कम आर्द्रता या नमी, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, थोड़ी सी कम रहे और हवादार हो। अमूमन ऐसे कमरों में रखें जहाँ का तापमान 24-25 डिग्री के आसपास बना रहे। आर्द्रता अगर 80-90% के आसपास रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, और हवा का फ्लो बना रहे, पंखा चलता रहे या कूलर संभव हो तो कूलर चलता रहे। जो लोग एयर कंडीशनर को अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के अमूमन देखा जाता है कि वो लोग बहुत टेम्परेचर नीचे गिरा देते हैं, उसके बाद 18-19 पे, और फिर कंबल ओढ़ के सोते हैं। ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। कभी भी अपने कमरे का तापमान 24 डिग्री से नीचे ना जाने दीजिए, नहीं तो पंखा जरूर चला के रखें और हवादार कमरे में रहें जिसमें खिड़कियाँ प्रॉपर हों। उसके बाद उस मेन चीज़ आती है, कपड़े कैसे पहनाए जाएँ। सब एक शिशुओं का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सूती कपड़े पहनाएं, क्योंकि वो पसीना सोखने की क्षमता रखते हैं, फिर वो पसीना उससे उड़ता है तो वो ठंडक प्रदान करता है। पॉलिएस्टर के कपड़े या सिंथेटिक कपड़े इनको ना पहनाएं, क्योंकि ये कष्ट देते हैं, और शिशु अमूमन ये बता नहीं पाते कि उनको उससे परेशानी हो रही, सिर्फ रोना शुरू कर देते हैं। फिर उनके रोने का कारण जानना एक सामान्य माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कपड़े हमेशा ढीले ढाले हों, हवादार हों, टाइट ना हों, और उसमें से हवा का अच्छे से आदान प्रदान हो ताकि पसीना उड़ सके और सूख सके, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है उनके भोजन का ध्यान रखना। ये ध्यान रखें कि अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हो सकता है उसको प्यास लगी हो। हम आप सब लोग तो आराम से बता देते हैं कि हमको प्यास लगी है, पानी पीना है। शिशुओं को बताने का तरीका अलग होता है। तो अगर कभी भी बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, तो पहले पानी जरूर पिलाएं, और अगर भूखा भी है तो भोजन से पहले थोड़ा सा पानी जरूर दें, क्योंकि अगर मुंह सूखा होता है बच्चे का तो जैसे हम लोग बड़ों के साथ है वैसे उनको भी भोजन चबाने में खाने में दिक्कत आती है, तो अमूमन वो उसके बाद भी चिड़चिड़ाते हैं, तो पानी हमेशा पिलाते रहें। और यदि शिशु खेल भी रहा है और नहीं भी मांग रहा भोजन या भूखा नहीं, तो भी आप थोड़ी थोड़ी देर पर 2-2 चम्मच पानी जरूर पिलाते रहें, क्योंकि इसकी वजह से शरीर पर पसीना बनेगा, उड़ेगा, तो शरीर का तापमान सुरक्षित रहेगा और उसके पेशाब का बहाव भी बना रहेगा, ताकि उससे वजह से शरीर के और अवयव जो होते हैं जो बाहर निकलते भी रहते हैं। पानी पे हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ठंडा पानी बच्चे नहीं पीना चाहते बहुत, और या गर्म पानी भी नहीं पिलाना है। पानी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ पे अब आजकल लोगों ने आरओ के फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं वो तो ठीक है, नहीं तो आप पानी उबाल कर ले, उबाल के उसको ठंडा होने का इंतजार कीजिए। उस ठंडे हुए पानी को आप में थोड़ा सा फ्रिज का पानी उसमें मिला करके, ताकि सामान्य से थोड़ा अच्छा हो जाए, जिसका स्वाद बेहतर लगे, वैसा करके आप बच्चे को चम्मच से या कटोरी से पिला सकते हैं। सबसे उसके बाद आती है चीज़ की हाइजीन, सफाई सुथराई का ध्यान रखना, क्योंकि इस मौसम में पानी अमूमन गर्मी बहुत रहती है, तो कुछ भी लोग प्यास लगने पे कुछ भी खा पी लेते हैं। तो हमेशा ताजा बना हुआ भोजन, ताजी कटी हुई सब्जियां, ताजे काटे हुए फल ही इस्तेमाल करें, रखी हुई चीजें ना इस्तेमाल करें, दोबारा गर्म किया हुआ भोजन ना दें, और अगर फल जहां तक संभव हो छिलकेदार फल यूज करें, जैसे केला है, संतरा है, जिनको कि आप बाहरी परत है उसको आप छील के निकाल सकते हैं, ताकि जिसमें उसमें जो वायरस बैक्टीरिया या जो भी चीजें हैं उनको आप हटा सकते हैं, और अंदर का जो फल है वो आपको स्वस्थ तरीके से मिल जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी है इस मौसम में, तेल लगा के मालिश लगाना या पाउडर लगाना या काजल लगाना इस मौसम में जरूर अवॉइड करें जहां तक हो सके, क्योंकि अगर आपने तेल शरीर पे लगा दिया तो वो पसीना नहीं निकलने देगा और शरीर का तापमान बढ़ा देगा और बच्चा चिड़चिड़ाएगा। पाउडर लगाने का अमूमन कोई फायदा नहीं होता, लोग पाउडर बहुत लगाते हैं, क्योंकि पाउडर का भी यही नुकसान है कि वो आपके जो पसीने की ग्रंथियां होती है इनके मुंह बंद कर देता है, तो पसीना निकलने नहीं पाता, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, फिर बच्चा चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है। तो इस मौसम में अगर आप मालिश करनी है, अच्छी चीज़ होती है, तो हमेशा प्रयास करें कि नहाने से पहले मालिश कर दें, और मालिश करने के आधे घंटे के बाद फिर उसको साबुन से नहला करके जो अधिक जो एक्सेस में तेल है शरीर से लगा हुआ उसको पोंछ दें, और जहाँ तक संभव अगर गर्मी ज़्यादा हो तो दोनों टाइम, सुबह और शाम, दोनों टाइम बच्चे को नहलाएं, बच्चा खुश रहेगा, अच्छा रहेगा और हमेशा अच्छी नींद सोएगा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर युगांतर पांडे की वार्ता, गर्मी के मौसम में शिशुओं की देखभाल। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे कार्यक्रम होगा खेल दर्पण। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाएंगे पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनेट वादन और रात 10:30 पर पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन सुनिएगा। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। विषय होगा डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9 बजे, दिन में 11:30 पर और रात 8 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर सोनू निषाद और शाम 7:45 पर शिवानी केसरवानी से गीत और भजन का आनंद लीजिए।

लोक गीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे वर्षा तिवारी, धीरज कुमार और साथी। दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे विनीता तिवारी, विकास श्रीवास्तव और वत्सला मनोहर देवधर। सुनिएगा इनके स्वरों में लोकगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार से सुनिएगा दिन में 11 बजे। अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गानों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में समय होगा 12:30। प्रस्तुति मधु कुमार की। सवा बजे पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे बहने सुनेंगी उमा दीक्षित की वार्ता, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां, साथ ही प्रतिमा श्रीवास्तव से लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में जगदीश यादव और साथियों के गाए लोकगीत होंगे। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे बाबूलाल दिवाकर और साथियों से लोकगीत, साथ ही रामायण पाठ का भी आनंद लीजिएगा। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा और रात 8:30 पर सुनेगा सबरस कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिश्री अवोचत् यत् देशद्वये

0: विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग ह्लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् संबोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्ण रूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षा मंत्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमंत्री रक्षामंत्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवित पात्रावर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के राज्यकाल में अयोध्या की सुख संपदा तथा प्राकृतिक छटा को मात्र अनुपम की संज्ञा दे देना पर्याप्त नहीं है। पक्षीराज गरुड़ को राम नाम की महिमा सुनाते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जब से अवधपुरी में राजा रामचंद्र के प्रताप का सूर्य उदित हुआ है, तीनों लोकों से अज्ञान के अंधकार का नाश हो गया है। मद, मान, मोह और ईर्ष्या का लोप और सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक का उदय, ये है रामराज्य की विशेषता, जिसका आकर्षण सनकादि मुनि तक को खींचकर अयोध्या ले आता है।

श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का अभी आप आनंद ले रहे थे। स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन।

चारधाम फिल्म से ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के स्वर में। उदय शंकर पाणी की शब्द रचना है, सुरेंद्र कोहली का संगीत। लीजिए सुनिए।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम में अब सुनिए आदि पुरुष फिल्म से सचेत टंडन और परंपरा के स्वर में ये भजन, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना, सचेत और परंपरा का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 7:20 होने को है। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की

0: आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
1: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार

0: बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1,026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज

आपको सुनवा रहे हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, राग है भटियार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्रवण कुमार भट्ट। विलंबित रचना और द्रुत रचना एक ताल में निबद्ध है, तो लीजिए सुनिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग भटियार में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग भटियार में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्रवण कुमार भट्ट ने। विलंबित और द्रुत रचना एक ताल में निबद्ध थी। और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना।

अभी आपने सुना आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, उर्दू कार्यक्रम में 9:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर कहकशां इरफान का मखाला दाग दहलवी के खतूत की तारीखी अहमियत। इसके अलावा कलाम शायर के तहत आप सुनेंगे मोहतरमा अतिया नूर से उनका कलाम। आठ बजने को हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए।

0: दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 branches also.
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने

0: के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन ऑंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said, Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला

0: और इलाकाई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफैन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खास तौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मस्नूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दोतरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने ये महसूस किया है कि कैसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़्यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 साल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इकदामात में नुमाया तब्दीली आई है। हुकूमत की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इकदामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज़ 2015 में किया गया था, करोड़ों ख़वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसअत देने के लिए ज़मानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कुरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंकारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष

0: कार्यकाल बहुत अच्छा है। उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजों पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
2: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकरीर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने ये जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जाँच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायात के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली ज़िले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ़ुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 ऑफ अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सयाहों को ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफ़र को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर ज़िले में बेतवा दरिया पर ज़ेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के ज़िला मैजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतज़ामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जांच कर रही है। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्ती रानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अवी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्ती रान खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कान पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
2: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 गोल किया जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूल ए में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं।

0: भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवस्सुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहाँ रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 MLA संदीपन साहा और ऋतव्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क़्यादत मुखालिफ बयानात की वजह से की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया, जबकि सदर ओमिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर ओमिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं नमस्कारम, शुभम मंगलम, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज और मैं हूं आपकी आज के कार्यक्रम प्रस्तोत्री मोना पांडे। और आज का हमारा कार्यक्रम विषय है डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा।

श्रोताओं, आज का समय तकनीक का समय है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के जीवन को नई शिक्षा दी है, नई दिशा दी है। ज्ञान प्राप्त करने, नई चीजें सीखने और दुनिया से जुड़ने के अनगिनत अवसर आज

अपना प्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज और मैं हूँ आपकी आज की कार्यक्रम प्रस्तोत्री मोना पांडे। और आज का हमारा कार्यक्रम विषय है डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा।

श्रोताओं, आज का समय तकनीक का समय है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों के जीवन को नई शिक्षा दी है, नई दिशा दी है। ज्ञान प्राप्त करने, नई चीजें सीखने और दुनिया से जुड़ने के अनगिनत अवसर आज बच्चों के सामने हैं। लेकिन इन अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं श्रोताओं, जिनसे बच्चों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान के साथ साथ विवेक को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए ये कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम, ततः सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से जीवन में सुख एवं सफलता प्राप्त होती है। डिजिटल माध्यम भी ज्ञान का एक स्रोत है, लेकिन इसका सही और संतुलित उपयोग ही वास्तविक शिक्षा है। और श्रोताओं, इसी बात पर आइए आपको सुनवाते हैं कवि प्रदीप का गाया और लिखा हुआ जागृति फिल्म का गाना। और इस गाने की फरमाइश की है हमारी नियमित श्रोता नीरा त्रिपाठी जी ने।

और इन ख़तरों में साइबर बुलिंग, फर्जी वेबसाइटें, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अनुचित सामग्री और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी जैसी समस्याएं शामिल हैं। और इस संदर्भ में एक संस्कृत सुभाषित बहुत ही प्रेरणादायक है और मैं आपसे चाहूँगी यहाँ पे साझा करना। कहा गया है, सावधानी ही मनुष्याणाम रक्षाम करोति सर्वदा, अर्थात सावधानी ही मनुष्य की सदैव रक्षा करती है। बच्चों को ये समझाना बहुत आवश्यक है श्रोताओं कि इंटरनेट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे घर, पता, फ़ोन नंबर, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी नुकसान हमें देखने में आ सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है श्रोताओं, ये किसी से छुपी नहीं है। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और बच्चों की सुरक्षा हेतु अच्छे कदम, सार्थक कदम उठाने ही होंगे। बच्चों के साथ संवाद अगर हम बनाए रखें तो उनकी बहुत सारी बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी ऑनलाइन व्यवहार को समझना चाहिए और उन्हें सही दिशा देना समय की आवश्यकता है। महात्मा गांधी का एक विचार है, यदि हमें सच्ची शांति प्राप्त करनी है तो उसकी शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी। और श्रोताओं, जब बच्चे सुरक्षित होंगे तभी उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित होना चाहिए। लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग उनकी आँखों, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, और इसीलिए डिजिटल उपकरणों के साथ साथ खेलकूद, पुस्तक पढ़ना, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों को भी जीवन का हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज़ की अति उचित नहीं होती। ये संदेश डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर भी समान रूप से लागू होता है श्रोताओं।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको ये गाना ज़रूर पसंद आया होगा। आज बच्चे बहुत कम उम्र में ही स्मार्टफोन और इंटरनेट से परिचित हो जाते हैं, और जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा की। तो जहाँ तक ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षिक वीडियो और डिजिटल सामग्री की बात करें तो ये बच्चों के विकास में बहुत सहायक होते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे खतरे भी मौजूद हैं जिनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है।

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको गाने भी सुनवाते हैं, तो अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साज और आवाज़ फिल्म से। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और इस गाने की फरमाइश हमें भेजी उत्तम सिंह जंघेल ने, और सुनना चाहते हैं मुरज जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

गाना सुनवाने के साथ साथ हम आपसे साझा करने चाहेंगे उन विचारों को जो फेसबुक के माध्यम से हमारे श्रोताओं ने हमें हम तक पहुंचाए हैं। नीला जी लिखती हैं, मोना जी नमस्कार। किसी भी घर में शांति का मतलब झगड़ों का अभाव नहीं है, ये परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार और समझ को दर्शाता है। ये कठिन क्षणों के बाद सुधार करने की उनकी इच्छा है। साथ ही लिखती हैं, अपनी उम्र से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की उम्र आपकी उम्र से अधिक है।

उत्तम सिंह जंघेल जी लिखते हैं, दो जून की रोटी हमें सिखाती है कि जीवन की असली ज़रूरतें बहुत छोटी होती हैं लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए इच्छाओं को सीमित रखें क्योंकि इनका अंत नहीं होता है। बहुत सुंदर सुविचार है। एक और सुविचार हमें मिला है विष्णु टेलर जी का, लिखते हैं, जीवन में सफलता पाने

लिए भाग्य से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि भाग्य बदल सकता है लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म करते रहें और लोग चाहे जो भी कहें, पहचाने या ना पहचाने, समय पर कर्म का हिसाब अवश्य देता है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहें। विष्णु मिस्किन, ऋतिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही प्रियांशी सोनी ने दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से हमें ये विचार भेजा है। मुकेश कश्यप जी लिखते हैं, आपको मेरा नमस्कार जी, आपको भी हमारा नमस्कार। लिखते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से कि आप कोई भी गाना अपनी पसंद का शामिल करें कार्यक्रम में और हमारा नाम ज़रूर शामिल करें। तो श्रोताओं सुन लीजिए, इनके नाम मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। दिनेश वर्मा लिखते हैं, जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएँ शांत हो जाती हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये संदेश हमें भेजा था दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य ने भी हमें ये संदेश भेजा है। नानलाम से लिखते हैं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी नाना जी, लामसे मीना, लामसे तेजस, जय लामसे, हर्षिता लामसे, और इन्होंने भी हमसे कोई भी गीत सुनने की फरमाइश।

0: अश्विनी कुमार पांडे लिखते हैं, शिक्षा का सर्वोत्तम साधन पर्यटन है। ये हमें एक दूसरे से जोड़कर भी रखती है और पर्यटन व पर्यावरण कार्यकर्ता अश्विनी कुमार पांडे चिरमिरी छत्तीसगढ़ से हमें ये संदेश भेजे हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डिजिटल युग को रोकना संभव नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है तो बच्चों को डिजिटल रूप से सशक्त और जागरूक बनाने की।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा वो है जो मनुष्य में चरित्र निर्माण करे, मन की शक्ति बढ़ाए और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। तो हम यही कामना करेंगे कि शिक्षा ऐसी मिले जिससे हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बने। तब तक के लिए श्रोताओं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों को डिजिटल दुनिया में सजग और सुरक्षित बनाइए। फिर लेकर आएंगे आपके लिए नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम का अगला अंक। दीजिए इजाज़त।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: अब सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना था एक रात की फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना थी, SD बर्मन का संगीत था। और अब दिले नादान फिल्म का गाना सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। नक्शिल्यालपुरी की शब्द रचना, खयाम का संगीत।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुनिए फिल्म नूरी से लता मंगेशकर की आवाज़ें, जान निसार अख्तर की शब्द रचना, खयाम का संगीत।

0: से जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, अभी अपने आनंद लिया फिल्म संगीत का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को है। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल। रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि

0: बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर कानपुर नगर का औचित्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश, युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
1: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि आईटीआई में कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे आईटीआई करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे आईटीआई में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें, तो इन बच्चों को भी इंडस्ट्री में घुमाएं, देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दिख रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC, राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC, लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
2: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
4: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं

0: द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
1: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
0: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए देश गान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम।
1: पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सुनने वालों को शमीम का आदाब। हजरात, आज के उर्दू बज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला दाग दहलवी के खतूत की तारीख़ी अहमियत। इसके अलावा कलाम शायर के तहत आप समात करेंगे मोहतरमा अतिया नूर से उनका कलाम। पहले समात फरमाइए मकाला दाग दहलवी के खतूत की तारीख़ी अहमियत। मकाला पेश कर रही हैं डॉक्टर कहकशा इरफान।
2: मिर्ज़ा दाग दहलवी उर्दू अदब और 19वीं सदी के मशहूर व मारूफ शायर और उर्दू शायरी के अजीम उस्ताद थे, जिन्हें ज़बान व बयान पर बेपनाह कुदरत, मुहावरा बंदी और क़िले मौला की टकसाल ज़बान का सबसे बड़ा नुमाइंदा शायर तस्लीम किया गया है। वो 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। दाग दहलवी नवाब ख़ानदान के चश्मो चराग थे। उनके वालिद नवाब शमसुद्दीन खां के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश लाल किले में बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज़ा फखरू की सरपरस्ती में हासिल हुई। दाग दहलवी को फसीहुल मुल्क और बुलबुल हिंद के खिताबात नवाजे गए। 17 मार्च 1905 को दाग दहलवी इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उनकी जाए वफात हैदराबाद है। दाग की शायरी की तरह उनके खतूत भी तारीखी अहमियत के हामिल हैं। आप सब वाकिफ़ हैं कि खतूत निगारी अपने जज्बात, ख्यालात, मालूमात को तहरीरी शक्ल में किसी दूसरे तक पहुंचाने का एक अदबी व अमली फ़न है। ये नसर की एक अहम सिन्फ है जो सलासत, बरजस्तगी व बेसाख्तगी और मकसदियत पर मबनी होती है, जिसे अक्सर निस्फ मुलाकात कहा जाता है। उर्दू में मिर्ज़ा गालिब ने खतूत को सादगी व बरजस्तगी अता करके इस फ़न को उरूज बख्शा। खतूत इंसान की ज़िंदगी का वो अक्स हैं जिसमें इंसानी शख्सियत के तमाम पहलू मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आते हैं। खतूत दो लोगों के बीच राबते और तबादले ख्याल का कदीम काबिल एतबार वसीला माना जाता रहा है, और अदीबों के खतूत तारीख़ अदब को मुरतब करने में मुआविन साबित होते हैं। नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी के खतूत उर्दू अदब और तारीख़ में मुनफरद मकाम रखते हैं। उनके खतूत

0: दाग को जलाकर खाक में मिलाकर आप लखनऊ चले गए। खैर सब्र शुक्र, चूंकि ये बेवफाई और कजदाई आपने उड़ाई है, हम भी सितम समझे। ऐ शख्स, अल्लाह रे तेरा दिमाग, चलते वक्त मिलना और इस तमकनत और इस इस्तगना के साथ रहम ना आया, तर्स न खाया कि एक कुश्ते फराक तड़प रहा है, उसकी दिलजुई कीजिए या उसकी तलाफी। ये हुई कि लो हम जाते हैं। अच्छा जाओ, गारत हो, दोहरा सब्र कर लेंगे। वो काफिला लखनऊ से अजीमाबाद पहुंचा, वहां से एक कयामतनामा मेरे नाम आया, जिसका मजमून काबिले तहरीर नहीं, जिसके साथ की मेरी तस्वीर सैयद नाजिर हसन को दी है, उसके साथ की चंद तस्वीरें और मुझको इनायत हो। मैं चाहता हूँ कि जो हाल आपने देखा है वो मेरी कैफियत किसी और से न कहना। खुदा के वास्ते खाक में न मिलाना। राकिम मिर्जा दाग। अंजुम निशापुरी को ही 7 मई 1882 को अपने कयाम अजीमाबाद और सेहत के बारे में लिखते हैं। बाद सलाम मसनून, वाजे हो कि मैं बखैरियत तो आफियत वारिद पटना अजीमाबाद हुआ। मोहल्ला गरहटा मकान सैयद बाकिर साहब में मुकीम हूँ। 4 रोज हुए कलकत्ता रवाना हो गए। कुतुबुद्दीन को अपने साथ ले गए। यहाँ की आबो हवा नहायत ख़राब, गर्मी की नहायत शिद्दत। अहले अजीमाबाद ने मेरी इस कदर खातिर व इज्जत की है कि जिसकी हद नहीं, कलकत्ते नहीं जाने देते। मेरी तबीयत अलील हुई जाती है, अब भी अलील है। सरकार में खत भेजा है, उनके जवाब का मुंतजिर हूँ। मिर्जा दाग ने जिन खवातीन को मकतूबात लिखे हैं उनमें जनाब औलिया बेगम साहिबा, मुसम्मात नबी जान, मुसम्मात मुन्नी बाई हिजाब, मुसम्मात हमीदन बाई, जनाब अजीज़ बेगम साहबा और मुसम्मात मलका जान के नाम खतूत ज़बान दाग में शामिल हैं, जबकि दाग के साथ ताल्लुकात की फहरिस्त में उनके अलावा अख्तर जान, आगरा की साहब जान और मेरठ की रहने वाली उमदा जान भी शामिल हैं। उनमें कलकत्ता की मलका जान और मुन्नी बाई हिजाब से उन्हें खास लगाव था। मलका जान कलकत्ता की मशहूर डेरादार तवायफ थी, हालांकि बनारस की रहने वाली थी लेकिन कलकत्ता में सुकूनत अख्तियार कर ली थी। मलका जान इस गौहर जान की माँ थी जो न सिर्फ हिंदुस्तानियों में मकबूल थी बल्कि अंग्रेजों की भी खास पसंद थी। उसी गौहर जान के बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खुश नसीब आज यहाँ कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। दाग और मलका जान के ताल्लुकात का अंदाजा दाग के खतूत से बखूबी होता है। मलका जान को अपने मकतूब मुअर्रिखा 12 मार्च 1886 में तहरीर करते हैं, मलके अकलीम सुखनवरी, बनारस की सनम, कलकत्ता की परी, दाम जमालहा व कमालहा। क्यों जी, खुदा ने मुझे क्यों आशिक मिजाज बनाया, इस बला में क्यों फंसाया, पत्थर का दिल लोहे का कलेजा क्यों न बनाया, जिसमें कोई अच्छी अदा देखी तबीयत लौट गई, खुसूसन कोई माशूक खानदा हो और शेर गो भी हो। मिर्जा दाग की मौत है। फरियाद दाग के मुताले से कैफियत मालूम हुई होगी। रहम आता है अपनी हालत पर पड़े पत्थर बुतों की चाहत पर, रहम आता है अपनी हालत पर पड़े पत्थर बुतों की चाहत पर। मीर कुतुबुद्दीन अश्क को मुन्नी बाई की मिजाज पुरसी के लिए कलकत्ते भेजा था। अब जो वहां से वापस आए तुम्हारा भी संदेशा लाए, मसनवी जो इनायत हुई उसका शुक्रिया किस जबान से अदा करूं, बगैर मुलाकात के उसकी पूरी दाद नहीं दे सकता। दाग दहलवी के खतूत को पढ़कर अंदाजा होता है कि दाग को तवायफों से न सिर्फ लगाव था बल्कि उनसे खतो किताबत भी थी। जब वो किसी तवायफ को खत लिखते तो खास एहतमाम के साथ न सिर्फ तहरीर करते बल्कि उसके लिए खास लिफाफा भी तैयार करते, उसे बेल बूटे से सजाते और सजे सजाए लिफाफा को दूसरे लिफाफे के अंदर रख कर भेजते। दाग दहलवी के खतूत के मुताले के बाद ये एहसास होता है कि उन्होंने दानिस्ता या ना दानिस्ता गालिब की पैरवी करने की कोशिश की है। ऐसे खतूत जहाँ बगैर गौर व फिक्र के बर्जस्ता लिखे या लिखवाए गए हैं उनमें शोखी और जराफत और बजलसंजी का पहलू नुमाया है और गालिब ही की तरह खत के दरमियान में अपने शेर का इस्तेमाल करते हैं बल्कि बाज़ औक़ात मंजूम शक्ल में भी अपनी बात कहते हैं। रिश्ते की मुनासबत से खतूत दिलचस्प और बेबाक हैं, तकल्लुफ बेतकल्लुफी और बेसाख्तगी है। गालिब की ही मानिंद बाज़ खतूत में बजलसंजी और जराफत का अंसुर नुमाया नजर आता है। जब अपने माशूक या तवायफ से मुखातिब होते हैं तो शोखी अदा बढ़ जाती है, चूंकि उन्हें दहलवी जबान पर नाज है और वो जबान के इस्तेमाल का खास ख्याल रखते हैं, इसलिए अक्सर बा मुहावरा जबान में गुफ्तगू करते हैं। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि तहजीब का दामन उनके हाथ से कभी नहीं छूट सकता और कभी इतने खुल जाते हैं कि कोई हिजाब दरमियान में हायल नहीं होता। गालिब की मानिंद मुरासले को मुकालमा बनाने की कोशिश मौजूद है, यानी हिजाब व बेहिजाबी, तकल्लुफ व बेतकल्लुफी, खुशमिजाजी व दर्दमंदी, सादगी व पुरकारी, मुरासला व मकालमा, गरज, हर तरह के जज्बात, अंदाज और लुत्फ उनकी तहरीर में मौजूद है।
1: अभी आप

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए फिर सुनिए कैलाश गौतम की रचना, स्वर हैं सोनू निषाद के।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार थे सोनू निषाद। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आतंकरोधी दस्ती ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की

0: रजिस्ट्री के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज बेहतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार हैं वर्षा तिवारी और धीरज कुमार और साथी। तो सबसे पहले सुनते हैं वर्षा तिवारी के स्वर में ये देवी गीत।

अभी आपने सुना धीरज कुमार और साथियों के स्वर में ये झूमर, और इस लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न होता है। आज के कलाकार थे वर्षा तिवारी और धीरज कुमार और साथी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है

0: जय उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@c

0: cit.nic.in।
1: आप CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे।

0: एक दिन
1: देखो, मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
0: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पास्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे
5: भेड़िया,
2: लुई पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
6: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्चर घबरा गए।
6: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
6: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
6: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पास्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पास्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर।

0: मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है। कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
2: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है।

0: सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है। और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन

0: 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
1: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
1: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
1: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
1: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ,
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
3: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
3: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे

0: कार्यक्रम लुई पाश्चर। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की ओर से उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता आर माधवन। आइए सुनते हैं इन पे फिल्माया गया प्यारा प्यारा से नगमे। सबसे पहले ये गीत

रहना है तेरे दिल में। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत, केके की आवाज़ थी, समीर ने गीत लिखा था, हरीश ने तर्ज बनाई थी।

रंग दे बसंती। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर ए आर रहमान की आवाज़ में। गीत और संगीत दिया था ए आर रहमान ने। आज के कलाकार हैं आर माधवन। माधवन हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता हैं। उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला है। साथ ही अन्य संगठनों की मान्यता और नामांकन भी शामिल है। 2000 के दशक के मध्य में माधवन ने 3 अत्यधिक सफल प्रोडक्शन राकेश ओम प्रकाश मेहरा की रंग दे बसंती, 2006 में मणिरत्नम की बायोपिक गुरु, 2011 में राजकुमार हिरानी की 3 इडियट में काम किया। इनकी कुछ मुख्य फिल्में हैं 1998 में शांति शांति, 2018 में जीरो, 2010 में 3 पत्ती, 2012 में जोड़ी ब्रेकर, 2020 में दिलविल, 2004 में युवा, 2005 में गुरु, 2009 में 3 इडियट, 2025 में धुरंधर, 2024 में शैतान, 2001 में रहना है तेरे दिल में, 2025 में आप जैसा कोई। इस तरह की कई मुख्य फिल्मों इन्होंने दी। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा और नगमा।

0: झूठा ही सही प्यार तो कर।
1: इसी गीत के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के हमारे कलाकार थे अभिनेता एन माधवन। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म डुप्लीकेट से।

दुश्मन। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में। लीजिए आप सुनिए रिफ्यूजी फिल्म से ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने, तर्ज बनाई है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दिन के 12 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे। हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और

0: कृषि संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
2: कुछ ना करे क्या, कैसे करे, कैसे आगे जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो केवल ना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा ये देश के लिए, ये मट्टी के लिए, मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है। बलिदान दिए हैं, ये प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उद्देश्य क्या कहते जनजातीय गरिमा उत्सव मना रहे हैं।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from the arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nago, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oaths as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. The appointments were made weeks after President Draupadi Murmu promulgated the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, increasing the sanctioned strength of judges in the Apex Court from 34 to 38, including the Chief Justice of India. The Anti-Terrorism Squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammad Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received the information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. The intelligence was collected about Mohammad Sheikh of Azamgarh, who had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp. Handlers of Shahzad Bhatti's gang had assigned Mohammad Sheikh to threaten and assassinate a female leader of a political party from another state. Sheikh was also motivating local youth to join Shahzad Bhatti's gang. The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for re-evaluation of

0: answers has been made live from today and will remain open till the 6th of June. The CBSE said the facility can only be availed by the students who have obtained a scanned copy of their evaluated answer books. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy President of South Africa Paul Mashatile in New Delhi today. They discussed opportunities in trade, investments, MSMEs, digital and infrastructure domains. They also agreed on working closely in international forums. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciates Paul Mashatile's strong commitment to deepening the long-standing partnership between the two countries. The President, Vice President and Prime Minister have extended greetings to the people of Telangana on its statehood day today. President Draupadi Murmu said Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hard-working people. She said the state has made significant strides in innovation and development over the years. Vice President C.P. Radhakrishnan said, blessed with rich cultural heritage and vibrant traditions, Telangana has contributed significantly to the nation's progress. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी कि 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित गोपाल दास का क्लैरोनेट वादन। 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम होगा, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट, इसके अंतर्गत सुनिए उमा दीक्षित की वार्ता ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियाँ। 2:30 पर लोकगीत का कार्यक्रम होगा, इसमें कलाकार होंगे विनीता तिवारी, विकास श्रीवास्तव, वात्सल्य मनोहर देवधर। 5:00 धरती के गीत कार्यक्रम सुनिए, इसमें कलाकार होंगे जगदीश यादव व साथी। 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, आज के प्रेरणा पूज होंगे सुंदरलाल बहुगुणा। छह बज के तीस मिनट पे पंचायत घर में सुनिए बाबूलाल दिवाकर का लोकगीत कार्यक्रम। 7:45 पर सुगम संगीत में सुनिए शिवानी केसरवानी के गाए भजन। 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा, 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। 9:30 पर गजलों पे आधारित कार्यक्रम सुनिए कहकशा। 10:00 खेल दर्पण होगा जो कि हम अपने लखनऊ के इनसे रिले करेंगे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण।

लीजिए, अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति की सूचना। श्री महावीर सिंह के सूचना के अनुसार गौरव सिंह, आयु 25 वर्ष, शरीर की बनावट, गहरा बदन है, मजबूत शरीर है, लंबाई इनकी 6 फीट है, चेहरा गोल है, आंखें सामान्य है, बाल काले छोटे हैं, पहनावा नीला जींस और नीली पैंट, नीली शर्ट पहन रखी है इन्होंने। ये 10 नवंबर 2025 से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें, थाना खागा, घटना स्थल कुल्लर कैफे खागा, जनपद फतेहपुर। मोबाइल नंबर है 9794873047। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9794873047। इसी के साथ सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:15 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित गोपाल दास का क्लैरिनेट वादन, राग था शुद्ध सारंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।
1: फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
2: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मुगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव आपका नियमित श्रोता बात कर रहे हैं। मधु मैम नमस्कार।
1: नमस्कार प्रेमचंद यादव जी, हमारे नियमित श्रोता हंडिया से बात।
2: मैम फिल्म का नाम है आपकी टू, गाने के बोल है हम मर जाएंगे, गाने को गाया है तुलसी कुमार अरिजीत सिंह ने और फिल्म में अभिनय किया है श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने। 2013 की फिल्म है ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: हम राकेश सिंह भूचपुरवा भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: जी राकेश सिंह जी का बहुत दिनों के बाद कॉल आया, कहाँ थे आप?
1: जी मैडम जी, हम रेडियो ही बंद कर दिए थे, छोड़ना है, सुनना
0: अरे क्या हो गया,
1: ही
0: ऐसी क्या बात हो गई कि आपने रेडियो सुनना ही बंद कर दिया?
1: नहीं। कुछ शादी विवाह था इसलिए और छोड़ दिए।
0: अच्छा
1: आप
0: अच्छा अच्छा
1: प्रोग्राम मतलब बहुत कम सुन रहे थे,
0: अच्छा अच्छा चलिए आज आपका
1: लेकिन
0: फोन आया,
1: आज
0: अच्छा लगा।
1: सोचे कि आज लगा के थोड़ा बात कर लें।
0: जी जी जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: प्यार झुकता फिल्म का गाना
0: प्यार
1: कविता
0: झुकता नहीं,
1: कृष्णमूर्ति की आवाज में है।
0: अच्छा गाने के बोल याद हैं आपको?
1: तुमसे मिलकर ऐसे गाने के बोल।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो हम आपको तो सुनवाएंगे ये आपकी पसंद का गाना। आपको किसी का नाम लेना है तो ले लीजिए।
1: हाँ जी, अशोक जी। हाँ, एक शारदा प्रसाद जी
0: जी
1: और सभी श्रोताओं के लिए।
0: तो आपको सुनवाते हैं प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये गाना।
1: नमस्कार मैडम।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम, मौसम बोल रहे हैं मैं।
0: नमस्कार मौसम जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी नंबर वन फिल्म का मैं। और गाने के बोले इश्क चांदी है इश्क सोना है।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है बीवी नंबर वन, लीजिए सुनिए।

0: आदरणीय मधु दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक है दीदी। आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा था।
1: जी राजू जी, बिल्कुल
0: जी, मेहरबानी है दीदी आपकी, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आकाशवाणी प्रयागराज पे फोन लगाना।
1: जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आज दीदी? आज की फिल्म रहेगी हमारी मुकद्दर का सिकंदर।
1: अच्छा, उसका कौन सा गाना है?
0: दिल तो है दिल, लता जी की आवाज में।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है राजू लवानिया जी ने। आगरा से फोन किया है इस गाने को सुनने के लिए।
0: वो कहावत है ना दीदी, ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। तो आपने जो गोल्डन गाना चुना है उसको हम सुनवाने जा रहे हैं।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अपना नाम बता दीजिए।
1: गांव दोदापुर पौर सुमरी प्रयागराज निवासी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो शो का मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सुखी
0: से। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।
0: जी
1: जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे
0: बहुत सुंदर गीत है।
1: हाँ,
0: मुकेश जी की आवाज़ में। तो आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए

0: राधा, अरे ओ राधा, का सोचत बैठी हो बहनी? हम कहा तो हसे राम राम।
1: राम राम सत्या बहनी, और पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सब बहनी हरिन का
0: राम राम।
1: सत्या,
0: हाँ
1: देखा सोचब का बहनी, गर्मी इतने चरम पे रही,
0: हाँ?
1: लेकिन दयु राजा 2 दिन से ऐसे मेहरबान हुई यहाँ की पूछा जिन, आज पनघटे के डगर कठिन नाय दिखात रही।
0: देखा बहनी, पनघटे के डगर कठिन तो नहीं दिखात, लेकिन मौसम के छलावा में ना रहू तू। काहे कि प्रभु का माया है और कहीं धूप कहीं छाया है ना।
1: बिल्कुल सही
0: अब
1: बात
0: ही
1: बहु।
0: अगर दऊ राजा सूर्य देव अभी थोड़ा अपने रूप में निकल आए एकदम नहाए धोई के, तो जान लियो कि फिर वही पसीना टप टप टप के लगे।
1: मतलब फिर वह गर्मी चरम पे घर से बाहर निकले को मन ना करे। हाँ
0: बिल्कुल
1: और देखा गर्मी है तो गर्मी में अपन बचाव भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। देखा घर गृहस्थी का सारा काम तो लगे रहा था, मुना वो काम फिर निर्भर करे लगा था समय के अनुसार, मतलब सवेरे और संझा।
1: हाँ कि मतलब देखा काम सब जरूरी है, लेकिन कौन काम हमका कब निपटावे का है, कौने समय में कितनी जल्दी निपटावे का है। कुछ काम बाहर का हो तो गर्मी यहाँ तो व्यक्ति पहले बाहर वाला काम निपटा ले था, अंदर वाला काम बाद में कर ले था,
0: बिल्कुल।
1: है ना। ऐसे जैसे देखा गर्मी यहाँ है, गर्मी में सबसे ज़्यादा आजकल काम है लड़कियों के लू लागत यह है, तो लू से बचे के लिए सबसे ज़्यादा हमको का जरूरत है कि गर्मी से बचें और
0: बिल्कुल
1: कोशिश करें हर तरीके से, चाहे कहीं आना जाना हो, चाहे खान पान का तरीका हो, चाहे पहनाव पोशाक की बात हो।
0: बिल्कुल सही कहती हूँ। और जब तू ये चर्चा छेड़ी दिए हो लू का, तो कस ने आज अपने पनघटे पर बहनी हरेन से यही बात कही ले जाए कि लू से बचें और पानी का भरपूर प्रयोग
1: प्रयोग करें।
0: करें।
1: तो देखा लू से बचे के लिए तो सीधी सी बात है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए के पड़े। अब जरूरी ना है वो पानी सिर्फ पानी के रूप में होए या ओमा कुछ मिलाए के पिया जाए।
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, पानियों पिए मुना गर्मी में अगर घामे से आए रहा है कहीं, तो देखा प्यास तो लगी रहा था मुना। वो पानी उतनी समय पिए में बड़ा निक लगा था, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो
1: नुकसानदायक होता
0: जाता।
1: है, इसलिए थोड़ी देर बैठे सुस्ताएं, थोड़ा पसीना सूखे, ओकरे बाद पानी पिए,
0: बिल्कुल
1: नहीं तो लेके दे पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और देखा पानी ऐसे ज्यादा पिए के लिए कहा जाता गर्मी में खास तौर पर, कहे से कि देखा पसीने के रूप में भी है ना शरीर का पानी निकलत है, और जोन बटे ऐसे ही सूखत रहत है हर चीज, शरीर के भी पानी भी सूखत है, ऐसा नहीं ना है ना। तो देखा पानी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करे से शरीर में आपके जोन बटे ठंडकपन बना रहत है, पानी की कमी नहीं होते है ना। और ओकरे साथ साथ जैसे लू से बचे के बताऊ है ना, तो इतने समय बहनी जहरे नजर दे रावा बाग बगीचा में आम अमिया टिकोरा लगा है, अब तो बड़ बड़ भी हो लगा है
1: हाँ,
0: ना।
1: देखा आम लू से बचे के बड़ा अच्छा साधन है। देखा कच्चे आम को पन्ना बनाए के पिए, सिकंजी बनाए के पिए, है ना, नारियल पानी पिए, और देखा

0: छाछ आए, लस्सी आए, दही आए, एक सब का करें एमा काला नमक जीरा मिला के पी सकत हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पता है खाए में भी स्वादिष्ट लागे, पिए में भी स्वादिष्ट लागे और अपने शरीर में तराई भी रखे।
1: बिल्कुल, ठंडक गर्मी में बहुत जरूरी है और ठंडक बनावे के लिए राधा देखो इतनी ही समय दऊ राजा भी उपहार के रूप में का देथिन, खीरा देथिन, ककड़ी देथिन, तरबूज देथिन, खरबूज देथिन, है ना। तो ये सब जब देथिन तो मौसम के अनुसार तरल फल अगर ईश्वर भी हमें दे रहा बा तो वही का सेवन भी करे चाहिए। खाना पान खान पान में ज्यादा से ज्यादा बहनी सलाद का उपयोग करें, उस सलाद चाहे खीरा के हो, चाहे ककड़ी के हो, है ना, चाहे टमाटर हो और प्याज हो। और प्याज का नाम लियो तो इतनी समय तो भैया हर घर में देखा दही जरूर जमा था, है ना, कुछ बनना ही चाहे ना,
0: दही जो ना है, छाछ जो ना है, वो अमृत के समान है।
1: बिल्कुल, तो हमरे घरे गुइया हम तो का बताई कि हर रोज दही प्याज बनाता है खाना में सलाद की जगह पे। अच्छा। और जोन बटे ओकरे अलावा जोन बटे दही प्याज के अलावा जोन बटे नींबू प्याज इतनी समय सिरका प्याज वह सब मतलब कि इतनी समय बदल बदल के लोग कर रहा है। तो देखो
0: लेकिन एक चीज और है सत्य, पता है लोग का करते हैं ना गर्मी में खाली पेटे, कहा थे कुछ भूख ना लगत, यह खाली पेटे रह जाते हैं। खाली पेटे रहा बड़ा नुकसानदायक है,
1: बहुत
0: खाली पेटे ना रहें, हल्का भोजन करें, भोजन जरूरी है लेकिन हल्का भोजन करें, तला भुना ना खाएं।
1: हाँ।
0: भोजन का मतलब ये थोड़ी कि आप चटपटा खाएं, स्वादिष्ट खाएं,
1: हाँ।
0: खाएं तबे भोजन भा। अरे गर्मी के मौसम आ एक मतलब कि मौसम बदला के मौसम के अनुसार हमारा खाना पान बदले के चाहिए।
1: राधा देखे एकर व्यवस्था कुदरत खुदे कह के दिए भेजते हैं। देखे यही मौसम में काहे नेनुआ भिंडी तरोई होता है ना, हल्का भोजन भी होता, हल्की सब्जी, सुपाच्य सब्जी, पेट के लिए लाभदायक सब्जी, है ना। और देखो नेनुआ भिंडी और कद्दू तरोई जो आवत है इस समय ओहमन ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ते।
0: हाँ,
1: हल्के तेल मसाला में बड़े
0: सादा है ना, सादा खाएं और पानी वाली सब्जी आटे वही सब। हाँ, लागत मम्मी खास रहा था।
1: तो देखो यही जान ला कि इन्ना सोचे कि पनिए पानी, अनाज की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता हमारे शरीर में।
0: अनाज जरूरी है। हाँ। कहे ना कि मतलब सादा खाना खाएं लेकिन भोजन जरूर करें,
1: जरूर करें, खाली पेट।
0: आज बड़ी गर्मी है, भूख ना लगती है, खाना ना खावे,
1: खाना ना खाया और कोनो काम पड़ गया घर से बाहर निकल गया इतना जान लग खाली पेट लू और लागत है ना। और गर्मी का असर भी ज्यादा, शरीर आपका कमजोर हो लगता है, तो ऐसे जरूरी है भोजन करें लेकिन वही भोजन करें जो पेट के लिए शरीर के लिए अच्छा हो, है ना,
0: सुपाच्य
1: हो।
0: और राधा सत्य एक चीज और जानती है।
1: हाँ?
0: पता है गर्मी के मौसम में कपड़ों को भी विशेष ध्यान रखे को।
1: बिल्कुल बहनी। हाँ। हम तो कहे थे हल्के रंग का कपड़ा पहने और ज्यादातर हो सके तो सूती जेका कहा थी अंग्रेजी में आजकल काटन। हाँ, है ना। हाँ। काटन के कपड़ा पहने भैया
0: जौन की हमार पसीना सोख है ना, जो कलर ऐसा पसंद करें जौन की आंख का सुकून दे।
1: बिल्कुल,
0: है ना, इन अगर चटा कलर पहन लेन बिल्कुल चमचमाता है, आंख बिल्कुल खुलत ना
1: देखा,
0: है, देखा ना जाता,
1: काला हो गया, नीला हो गया, हाँ, गाढ़ा काही रंग हरा हो गया, ये सब जाड़ा में बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ,
1: है ना।
0: हाँ।
1: लेकिन गर्मी में आप हल्का रंग ही पहने तो ज्यादा अच्छा रहता है।
0: हल्के रंग चयन करें और कपड़ा वह पहने जौन आपके शरीर पे आपका ठीक लागत हो, आप पहन के अच्छा महसूस कर रहे हो।
1: बिल्कुल,
0: ये नहीं कि कपड़ा बहुत बढ़िया है देखे में हमें का पहन ली, पहनने के बाद आपको चैन ना पड़ता है
1: गर्मी के मारे।
0: गर्मी के मारा।
1: हाँ।
0: तो इसलिए कोशिश करें कि देखें आपन शरीर ठीक है, अगर हम अंदर से अच्छा महसूस कर रहे ही तब सब कुछ अच्छा लागे।
1: बिल्कुल
0: अगर बहुत कुछ हम दिखावा में कई ले और हम खुद अंदर से ना महसूस करते ही ना फिर ओके लेने के देने ही पड़ जाता।
1: बिल्कुल सही कहते हो, हर समय हर चीज का महत्व बढ़ जाता है, है ना। हर मौसम में हर चीज का महत्व, जैसे जाड़ा में हम लोग जो है मोटा से मोटा और गाढ़ा रंग का कपड़ा पे कपड़ा पहनी थे, है ना। लेकिन गर्मी में आदमी एकदम मुलायम वस्त्र ऐसा ढूंढना था जो शरीर में एकदम ठंडक और राहत मुलायम दे।
0: हाँ सत्य, देखा ये बात तो रही गर्मी का, है ना, गर्मी और जैसे पानी की बात भाई, खाना की बात भाई, तो वैसे बात होता साफ सफाई का, स्वच्छता का, है ना। और देखा स्वच्छता साफ सफाई कैसे होए, अपने आसपास आप जितना साफ सफाई रखें उतने अच्छा अपन पर्यावरण होए, कैसी होए हमसी होए, हम करब तू करबू, जब हम तू करब तबे हम क्यों से कह सकब कि देखा वो हम सफाई रखी तू सभे रखा करा, तो अपने आस पड़ोसी में साफ रहे, अच्छा वातावरण रहे, शुद्ध हवा मिले, अपन पर्यावरण सुरक्षित रहे।
1: देखो गर्मी के दिनों में तो और साफ सफाई रखे की जरूरत ऐसे पड़ जाता है कि मक्खी इतनी समय देखा गाँव वगैरह में अगर हल्की

0: गंदगी रहता तो मक्खी, वही मक्खी उड़ के कूड़ा पे बैठा थे, उड़ के भोजन पे बैठा था, है ना। तो मक्खी है, मच्छर है, इन सब से बचाए के लिए साफ सफाई होकर ओकरे साथ साथ देखा इतने समय पसीना वगैरह इतना होता है ना, तो इन सब से भी बचाए के लिए जरूरी है कि हम कही था कि कपड़ा चाहे पानी से ही धुलें लेकिन वो कपड़े का प्रतिदिन साफ करत रहें, है ना।
1: बिल्कुल हाँ। और देखें पर्यावरण की जो बात होत रही ही, तो 2-4 दिन बाद देखा पर्यावरण दिवस भी आया।
0: हाँ
1: अपना सभी ढेर सारी बात बत कही करब बहनी हरिन से, है ना, कि बताऊबे कि पर्यावरण कैसे के संतुलित रखा जा सका था। देखा पर्यावरण की बात आवत ना, सबसे पहली बात हो तो पेड़ और छाया।
0: बिल्कुल
1: पेड़
0: सही
1: और छाया
0: कहते
1: है तो सब कुछ है, उसी शुद्ध हवा है, अपना सबका ईंधन भी मिला था, फल भी मिला था, सब्जी भी मिला था, चारों ओर हरियाली
0: ए
1: भी रहा
0: बहनी,
1: था।
0: यही लिए तो इन्हें प्राण वायु कहा जाता है। हाँ, पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो हम लोगन के प्राण वायु देते। देखा पानी बिना आधा 2-4 घंटा रह जाबू, भोजन बिना 1-2 दिना रह जाबू, लेकिन शुद्ध हवा
1: सांस
0: जैसे
1: ले बिना
0: सांस ले के
1: कैसे
0: है
1: रहू।
0: ओके बिना कैसे रहबू। एके लिए तो जरूरी है ना कि पेड़ पौधा लगावा जाए।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और
1: पेड़
0: देखा
1: पौधा लगावे
0: हम लोग
1: और
0: सुख
1: उनके
0: सुख
1: पालन भी करें ना, लगाए के भूल गए, लगाए के उनका
0: हाँ
1: पानी दें, सींचे, जैसे अपने लड़कियां बच्चन घरे में हो
0: बिल्कुल
1: जाते हैं, पैदा
0: बिल्कुल
1: होते हैं तो उनका हम सब खाना पानी दे के सेव पाल के बड़ा करी थी, वैसे पौधा भी लड़के बच्चे की तरह हो ना, सेव
0: और
1: पाल
0: देखा
1: के।
0: राधा, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने सुख सुविधा का उपभोग के वस्तुअन के लिए पेड़ का कटाई कर ली था। हाँ, बढ़िया बढ़िया दीवान बन रहा बा, तखत बन रहा बा, दरवाजा बन रहा बा, अलमारी बन रहा बा, घर का सौंदर्य तो बढ़ रहा बा, लेकिन अपने पर्यावरण जो है खूबसूरती का है
1: घटी
0: पेड़
1: जाती
0: पौधे,
1: है।
0: है ना, वो
1: हाँ
0: सब घटी
1: घटी
0: जाते हैं।
1: जाती है
0: और
1: काहे
0: जेके
1: से हम
0: कारण
1: सबे
0: पृथ्वी पर कार्बन जो है प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वायु प्रदूषण के रूप में हो, चाहे
1: चाहे
0: जोन
1: जल
0: बटे
1: प्रदूषण के रूप
0: जल
1: में हो।
0: प्रदूषण के रूप में हो। तो देखा प्रदूषण का कारण जो है हम ही लोग बनाई था, तो हमार लोग का यह समाज में या परिवार पर्यावरण में अगर रहे थे तो हमार आपका जिम्मेदारी बना था कि पर्यावरण के लालन पालन वही विधि करे जैसे अपने लड़का बच्चा का कर रहा है।
1: देखा सत्या, चरक संहिता में तो यह कहा गया है कि एक पेड़ लगाओ मतलब 100 पुत्र के बराबर पुण्य का फल मिला था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो कोशिश करें एक एक पेड़ सब लगावें और अपने पर्यावरण का अपने चारों ओर हरा भरा बनावें, ताकि मानव जीवन संतुलित रहे, खुशहाल रहे, शुद्ध हवा मिले, ताकि हम सभी बीमारी से न ग्रसित हो। जब
0: बिल्कुल
1: शुद्ध
0: सही
1: हवा
0: कहती हो
1: हवा
0: बहनी।
1: मिले
0: हाँ
1: तो काहे ग्रसित हो बे ना, हो बे ना,
0: बिल्कुल।
1: काहे हवा के
0: और
1: द्वारा ही
0: देखा
1: हमारे अंदर बहुत सारी
0: आजकल
1: चीज।
0: लड़कन जैसे अपने जन्मदिन पे केक काटत हैं, तो बल्कि हम तो कही थे एक चलन ई चलाए दें कि हर प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगावें।
1: बिल्कुल सही कहूँ सत्या, अगर सब ऐसे चेत लेंगे हैं तो चारों ओर बड़ी हरियाली हो जाए। अब रही बात हरियाली का, तो हमार देखा पनघटे में बिना गौने के सुना लागत आ, एक
0: हाँ,
1: गौने
0: तो
1: भी सुनाए दे।
0: अपने पनघटे पे हरियाली आ जाए। एके
1: हाँ
0: लिए चल प्रतिमा मिश्रा से बहनी से एक निक निक कहरवा सुन लीन जाए।

0: सत्या
1: हाँ राधा, देखा
0: बताओ,
1: एक
0: परम
1: बात
0: से
1: कहे।
0: ऐसी बिगड़ी कि
1: हाँ
0: सुपारी न खाए।
1: अब देखा, ऐसा न बिगाड़ू बहनी, है ना, कि कतरी सुपारी न खाए। देखा सुपारी न
0: अच्छी
1: खाए तो इतना ठीक है, कोनो स्वास्थ्य के
0: बात
1: लिए
0: है,
1: अच्छी बात ना
0: स्वास्थ्य
1: है ना, कि
0: बिल्कुल
1: सुपारी खाब कोनो अच्छी
0: बिल्कुल
1: बात ना है, लेकिन ऐसा न बिगाड़े कि फिर जलपान भी करब मुश्किल हो जाए।
0: देखा घर में रह के बैर ठीक ना होते, परिवार में प्रेम बना रहा बहुत जरूरी है, चाहे वो पति से हो, चाहे वो सास ससुर से हो, चाहे वो भाई बहन से हो, चाहे ससुराल जेठानी से हो। कहे देखा परिवार है तो सब कुछ है।
1: बिल्कुल सही
0: अगर
1: कहती
0: आदमी के
1: हो।
0: पास धन दौलत कमो है ना, परिवार भरा पूरा है, हंसता खेलता है, तो वो कहीं ना कहीं हर कमी पूरी कर देता
1: देखा परिवार के बांधे के लिए कोई अलग से डोरी नहीं होते,
0: है।
1: वो प्रेम रूपी डोर ही है जो पूरे परिवार के एक दूसरे से बांध के रखत है
0: बिल्कुल
1: ना। और
0: हाँ
1: देखा बहनी हरिन के लिए तो अगर हर चीज के लिए सजग रहती, आजकल बहनी हरे हर कार्य क्षेत्र में आगे हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना, कतों
0: हाँ
1: पीछे नहीं हैं। तो यही से संबंधित देखा एक वार्ता है अपने पनघटे पर, कि बहनी हरे के लिए जीवन में जो चुनौतियां होती ओकर जोन बाटे किस तरीके से सामना करथिन,
0: बिल्कुल
1: है
0: सही
1: ना।
0: बात कहूँ। देखा आजकल हमारे गांव में जौन बहनी हरिनिया हैं, या तो उनका जागरूकता का अभाव है, या फिर घर में ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं कि वो खुल के हर बात बताए ना पहुँतीन, कह ना पहुँतीन, है ना। तो देखा आज अपनों सभी यही बात पे चर्चा करे के लिए, देखा बहनी आए हैं उमा दीक्षित, ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियाँ,
1: बिल्कुल।
0: मतलब हमारे ग्रामीण बहनी हरिन कौन कौन चुनौती का सामना करत हैं
1: और
0: स्वास्थ्य
1: देखो
0: को लेके।
1: स्वास्थ्य के लेके खुद भी कर रही थी ना, घर के जितने सदस्य हैं अगर वो
0: हाँ
1: बीमार आजार पड़ थीन तो उन्हों का सेवा भाव सब उन्हीं के करे पड़त।
0: तो चला सुन लीन जाए
1: बिल्कुल
0: वार्ता सादगी।

शालीनता एवं सौम्य व्यक्तित्व के ध्वनि स्वर्गीय राजीव गांधी तत्कालीन भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सन 1985 में माता स्वर्गीय इंदिरा गांधी की अकस्मात मृत्यु के पश्चात उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से वे बहुत नए थे, परंतु युवा सोच के ध्वनि राजीव की देश के प्रति कुछ अच्छा कर गुजरने की जिजीवशा ने उनसे कई महत्वपूर्ण निर्णय करवा डाले, जिसका परिणाम भी चमत्कृत रहा। राजीव विकास संपन्न दृष्टि के नेता थे। भारत का 21वीं सदी में प्रवेश, कंप्यूटर शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण पर जोर इनकी इसी सोच का परिणाम था। इसी प्रकार पंचायती राज अवधारणा को पुनः जमीनी हकीकत पर उतारना उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था, ताकि केंद्र से निर्गत धनराशि छोटे से छोटे गांव तक पहुंचे और जन सामान्य भी लाभान्वित हो सकें। युवा शक्ति और जोश से लबरेज राजीव गांधी की आधुनिक भारत के विकास की समग्र विवेकपूर्ण दृष्टि थी। 21वीं सदी के विकसित भारत का खाका उनका स्पष्ट था, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहते थे। उन्हें पता था कि देश का विकास मात्र पुरुषों के बस की बात नहीं है, इसके लिए देश की आधी आबादी महिलाओं को भी अपनी भागीदारी निभानी ही होगी। अतः उन्होंने महिलाओं को भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का पहल किया और स्त्री सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। स्त्री शिक्षा, बराबरी का अधिकार, बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य, महिला आरक्षण, रोजगार सुविधा, महिलाओं की एकजुटता आदि हेतु उन्होंने बहुत सी कार्य योजनाओं को पारित करवाया। यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनमें महिला शिक्षा की बात करते हैं, तो राजीव गांधी का मानना था कि महिलाएं ही समाज का आधार तत्व हैं। परंतु जिस आदर और मजबूती की उन्हें आज जरूरत है, वह इन्हें नहीं मिलता, विशेष रूप से गांव में। एक तरफ तो स्त्रियों के आदर की बात हम करते हैं, वहीं उन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार भी किया जाता है। कितनी ही महिलाएं दहेज के लिए जला दी जाती हैं, और जब तक यह दुराभाव समाप्त नहीं होता, देश का विकास संभव नहीं है। महिला सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से महिलाओं को सबल हुए बिना असंभव होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से खड़ा होना होगा। तो असली भारत देश के गाँव में बचता है, अतः इन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष पक्षधर थे राजीव गांधी। स्त्री घर की धुरी है, और शिक्षित स्त्री घर और समाज के लिए निश्चित तौर पर वरदान साबित होगी, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार साक्षर, शिक्षित और जागरूक होकर समाज में स्वावलंबी भूमिका निभाएं, आत्मसम्मान प्राप्त करें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, अपना रोजगार हासिल कर सकें, इसके लिए उन्होंने राजीव गांधी साक्षरता मिशन सहित कई केंद्रीय कार्य योजनाओं को क्रियान्वित भी करवाया। प्राइमरी, हाई स्कूल आदि पढ़ाई हेतु वित्त विहीन शुल्क मुक्त शिक्षा की अवधारणा पर भी कार्य योजना उन्होंने बनाई, और इस हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन भी किया गया। और इन्हीं विशेष प्रयासों का परिणाम यह रहा कि महिलाओं की शिक्षा में जागरूकता आई, और अधिक से अधिक महिलाएं खुद और अपनी बच्चियों को शिक्षा हेतु भेजने लगीं। राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। यह उन्हीं का प्रयास था कि ग्रामीण महिलाओं ने कंप्यूटर की मुफ्त तकनीकी दक्षता प्राप्त की, रोजगार के क्षेत्र में

हाँ देखो राधा, हम लोग सुनत रहे जो है अभी ही, लेकिन एक बात और हम तो से ही कहा चाहिए था कि देखा हम लोग पनघट्टे पर आई था,

0: और गीत गौनई के माध्यम से ही थोड़ा मन आन हो जाता है ना। और एकरे साथ साथ हम लोग अपने पनघट्टे पर जब आई है तो चारों कैती देखा इतनी समय जैसे लड़कन बच्चन का स्कूल का छुट्टी है ना। मुना उन्हें गृह कार्य इतना मिला है ना। तो देखा ऐसा ना ही ना कि छुट्टी हो पे उनके पढ़ाई के लिए विशेष तौर से एकदम से छूट दे दे, थोड़ा बहुत ध्यान देवे के चाहिए। और देखा उनका गृह कार्य जो है वह करवावे के लिए माता पिता के समय निकाल के योगदान भी करे के चाहिए। कहे कि देखा बच्चन के चुनौती का सामना करे के लिए बचपन से ही तैयार करे के पड़त है ना। कोई भी आदत एक दो दिन में नहीं डाली जाती, उन्हें शुरू से छोटे से ही डाली जाता है ना। ऐसे जरूरी है कि बच्चन में आदत डालें और आपन कार्य स्वतः करे का आदत होए। तो ऐसे बात बोलत नहीं हो, कुछ और सोचे लगु बहनी तू?
1: देखा सोचे ही लागे हाँ? कि अब ही स्वास्थ्य का बात होत रही ही कि ग्रामीण बहनी, ग्रामीण जो हमार महिला बहनी है रहत यहाँ, ग्रामीण हो देखा चाहे शहरी हो, लेकिन स्वास्थ्य सबको जरूरी होता।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: अगर स्वास्थ्य सही आए तो सब कुछ सही आए। थोड़ा सा कार्यक्रम में हमरे व्यवधान जरूर भा, लेकिन फिर भी ओका जोड़त हुए बात तो पूरी कीन जाए। सबसे पहले स्वास्थ्य है, तब बाकी चीज आए। और स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हमरे और तोहरे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ पूरे परिवार को होता। अगर हमरे तोहरे स्वास्थ्य में तनिको व्यवधान आए तो पूरे परिवार का जो व्यवस्था है ना,
0: व्यवस्थापक ही कमजोर अगर हो जाए तो व्यवस्था कैसे बनी, कहा ही चाहत हो। तो देखा बहनी हरिन इतनी समय जैसे हम लड़कन बच्चन का बात किया तो बहनी हरिन के हाथ में है कि अपने बच्चन के भी सेहत का विशेष तौर से ध्यान दें। कहा कि इतनी समय आराम से छुट्टी है, बच्चन के स्वास्थ्य के देखत भय, उनके मन पसंद भी देखत भय, लाभप्रद उनके स्वास्थ्य के लिए जौन हो बनावें खिलावें और खूब अच्छे से बच्चन के सेवा करें। ओकरे साथ साथ चला अब मन करता है कि एक गीत सुन लीन जाए,
1: तो चला सुन लिया जाए।
2: लागा गोरी गुजरिया से

0: राधा गौनाई सुनो। देखा कितना अच्छा रहा। देखा एक बात और है, गीत गौनाई एक ऐसा माध्यम होता कि आप कहीं भी रह कोनों में हाल में रह मन प्रसन्न हो जाता है, है ना?
1: बिल्कुल। देखा ये चिंता से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कहा था कि जब तनाव हो तो संगीत जरूर सुन ले के चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो मानसिक जो संतुलन होता है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाता।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहती हो।
1: कोशिश करें हमेशा काम के साथ साथ संगीत जरूर सुनते रहें ताकि आपको स्वास्थ्य और स्वस्थ रहे,
0: मन और प्रसन्न
1: रहे। और देखा सत्या,
0: हाँ,
1: घर में परिवार में जब हम तो रही थी तो हमारा त्योहार सबसे ज्यादा जुड़ाव कौन सी जगह से रहा था?
0: अरे बहनी, घर का एक पसंदीदा जगह होता ना हर बहनी हरन का, रसोई घर।
1: हाँ, तो अगर देखा कहा गया है ना रसोइया, सीता का रसोइया कहे कही गया है। कहे से हम जौन घर में जितनी भी महिला होती ना सीता का रूप होती है ना।
0: बिल्कुल सही
1: कहती हो। रूप होती तो अपने घर में जब खाना बनावा थी उनका वही रूप में देखा जाता। हर स्त्री अपने घर में सीता के रूप में खाना बनावा था। तो देखा जब भोजन बनावा थी घर परिवार में 10 लोग, हाँ, 10 लोगों के पसंद के हिसाब से खाना बनावा पड़ा था, है ना? केहू कुछ पसंद आए, केहू कुछ पसंद आए, केहू कुछ पसंद आए। तो अपन बहनी हरिन का करी थी, ऐसा चीज बनाई थी कि जो में से एक एक चीज सबको पसंद रहा है और सब खुशी खुशी खाए।
0: देखा
1: सबको मानव
0: सबको पसंद रखत रखत कभी कदा बहनी हरे आपन पसंद भी भूल जाती।
1: बिल्कुल भूल जाती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमेशा ना है, कभी कभी सबके पसंद साथ अपनो ख्याल रखे। ना कि सबके ख्याल के साथ साथ अपन ख्याल रखा भूल जाए, अपन ख्याल भी जरूरी है। यह चीज तो हम कहे चाहिए थी। देखा दूसरे के लिए भी करें, दूसरे इतना न करें कि ओमा भूल जाए कि हाँ आप कुछ अस्तित्व है।
0: बिल्कुल सही कहती हो बहनी। और एक बात और है कि रसोई घर में हर मौसम के अनुसार हर समय के अनुसार खुशबू अलग अलग बदलत रहा था।
1: बिल्कुल बदलत रहा था और बदला था के हम तो देखा यह समय कावा है। गर्मी के मौसम में चारों तरफ आम इफरादा है, कच्चा आम, पक्का आम, है ना?
0: हाँ।
1: गुठली वाला, बिना गुठली वाला दोनों तरीके का है, जैसे चाहे वैसे प्रयोग मिले। और देखा आम को बात भी तो कहे ना, आज रसोइया से अपने आम को पना बताए दीन जाए।
0: बिल्कुल बहनी हरेन के आम के पना के बारे में चर्चा की जाए। देखा एक आम का पना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता, औषधीय गुण भी रखा था, है ना? और गर्मी के मौसम में तो एक तरह से उपचार हो जाता, दवा के रूप में, औषधि के रूप में इस्तेमाल होने लगा था। और देखा इतनी समय चाहे आम का पना हर घर में बन रहा था, कोई कच्चे आम के उबाल के भूंज के आधा हरा में क्यों बनाए रहा है, क्यों उबाल के, कोई पके आम के साथ, बच्चन तो छोटे छोटे ज्यादातर पके आम की ओर दौड़ रहा है ना?
1: पके आम वाला बड़े आसानी से बन जाता। सीधी सी बात है, पका आम ले लें, काम ले लें।
0: हाँ हाँ।
1: और मीठा आम है ज्यादा तो मैं चीनी कम डाले का है, अगर थोड़ा खट्टा वाला हाँ ज्यादा पड़े स्वाद अनुसार हाँ चीनी ले लें।
0: हाँ हाँ।
1: और उसका मिक्सी में डालें, छिलका उतारें, मिक्सी में डालें, घोल बनाएं और पी लें। बड़ा दूद, आसान
0: दूद के दूध में बढ़िया आराम से एह बहाने बच्चन के शरीर में दूध हो चला जाता। जो कुछ बच्चे दूध पी हम नाटक कर रहे थे,
1: लेकिन ज्यादा फायदेमंद कौन है पता है? कच्चे आम का पन्ना।
0: हाँ, ये बात तो सही कहती हो। कच्चे आम का पन्ना, कच्चे आम की चटनी, इतनी समय हर घर की रसोई में देखा कच्चे आम का गुरम्मा बनाए बनाए के जरूर रखा जाता, गुड़ के साथ पंच फोरन से फोरन दे के, है ना? तो कच्चे आम का पना भी बड़ा अच्छा है, उबाल लें या फिर भूंज लें, ओके बढ़िया ठंडे पानी में खूब बढ़िया मसल लेके ओकर गोदा निकाल लें, है ओके साथ साथ जोन बटे हर पुदीना अदरक ये सब पीसे रहे, हरा पुदीना ये सब पीसे रहे बढ़िया,
1: काला नमक
0: जलजीरा
1: जीरा भून के,
0: हाँ मसाला वही के जीरा भून के हल्का सा, और ओकरे साथ साथ अगर बच्चन के पसंद है तो

0: मीठा भी बनाए सकत हिन, कुछ लोग चीनी से जैसे परहेज करत हिन तो वो लोग ऐसे भी बनाए सकत हिन।
1: और अगर नमक वाला बनेंगे ना तो बच्चों ने बड़ा चटकारा ले लेके पी है,
0: बिल्कुल
1: हाजमोला वाला स्वाद आया।
0: हाँ देखा सही बात है कि स्वाद ही एक देखा पूरे शरीर का, अगर जीभ पर एक थोड़ा सा आपका पसंदीदा चीज रख जाता है तो पूरे शरीर का रोम मस्त हो जाती, एकदम से आनंदित हो जाती है ना, आनंद आ जाता है। जैसे आप बहुत खिन्नित हैं, किसी चीज के लिए बहुत परेशान हैं, घर गए, मन उदास है कि आज हमारी काम नहीं हुआ, मगर अगर रसोई

0: मस्त हो जाती हैं, एकदम से आनंदित हो जाती हैं, है ना, आनंद आ जाता है। जैसे आप बहुत खिन्नित हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं, घर गए, मन उदास है कि आज हमारी काम नहीं हुआ, मगर अगर रसोई घर से आपके बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी खुशबू आएगी आपके मन पसंदीदा चीज़ का, और ओके खाते मान पहला कौर लेते मान देखो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है ना। तो देखो बहनी, एक बात और है कि रसोई घर से अगर हम लोग इतना प्रेम करी था, तो रसोई घर के प्रति हमारे लोग का दायित्व है कि ओमन हर चीज़ के व्यवस्थित कई के, ताकि समय कभी जल्दी बनावे के रहता, कभी पर्याप्त समय रहता, कभी फटाफट काम रहे था। तो हम तो कही थे रसोई घर में जैसे हम लोग भोजन पानी बनाई थो के साथ साथ कई व्यवस्थाएं भी पहले से करके रखे के चाहिए, है ना। जैसे इतनी समय गर्मी है, रसोई घर में कुछ लोग भैया अरे जैसे लकड़ी फरात रहता था, चूल्हा का भी प्रयोग करती या गैस का भी कुछ लोग प्रयोग करती, तो इतनी समय खाना बनाओ बहनी, समय गर्मी में खास तौर पे अगर रसोई में है तो हम तो कही था सूती वस्त्र का ही उपयोग कह के बहनी हरे तब रसोई घर में जाए, है ना। काहे से देखा गर्मी का समय है, पसीना वगैरह भी अच्छे से सूती कपड़ा सोख लेता, बदन के ठंडक भी देता। और देखा एक बात और है, अगर हल्की सी आग उग भी रहत है ना, तो वो कपड़ा में बचत रहत है ना।
1: बिल्कुल सही कहो।
0: हाँ
1: तो मतलब गर्मी के जौन मौसम है, खान पान पहनाव पोशाक हर चीज़ का ध्यान दे पड़ा था। सर्दी में तो कैसे भी रहला, कैसे भी खाएला, कैसे भी पहनला, फिर रजाई में घुस जा। लेकिन गर्मी गर्मी में बहुत चीज़ बचावे खो था, मतलब
0: बिल्कुल
1: कुल मिला के फूक फूक के कदम रखे खो था। चला ही बात पे अब एक और गीत हो जाए।
0: बिल्कुल।

0: सत्या
1: हाँ
0: दिखा ढूंढो ढूंढो रे साजना, जब कतरी सुपारी कहीं ना खात रहे न, अब कहीं बाला ढूंढ पावती यहाँ। तो देखा ऐसे न होता, जब गर्गृहस्थी में प्रेम बना रहा तो काम के हो से कोनो भी करवा ले।
1: बिल्कुल सही कहती हो, बोझ भी नहीं लगत और हंसी हंसी में सारा काम हो जाता था। बिल्कुल सही कहती हो। देखो घर परिवार में आदमी हर तरह के लोग रहथिन, तो कुछ घर में, हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता जरूर, वो कुछ न कुछ बोली के माध्यम से घर में हंसी का माहौल बनाए रखा थे, है ना। मजाकिया कहा जाता जैसे कि मजाकिया मिजाज के लोग रहथिन। मुना वही मजाक मजाक में कुछ होशियार बहनी हरे रहथिन, जौन अपने घर का सारा काम भी निपटवा लेते हैं। और ओकरे साथ देखा बहनी, हम लोग जैसे पनघटे पर आई था, है ना, हसीत बोली था, हर तरह से बात करी था, लेकिन बहनी हरे आपन विचार हम लोगन तक कैसे ले आवे, एके लिए जरूरी है कि चला संदेश बहनी हरे सुन ले।
2: पनघट जहाँ बातन में हो था अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजे।
4: हमारा ईमेल एड्रेस है
5: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
4: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
6: बेसब्री से इंतजार रही।
1: तो राधा देखा बहनी हरे अगर अपने विचार हम लोगन तक ले आई हैं, जो उन बहनी हरे वहीं ईमेल एड्रेस बताई हैं, एक माध्यम से अगर विचार हम लोगन तक ले आई हैं तो बड़ा अच्छा रही, है ना। काहे से कि देख हम लोग भी इंतजार करत रही था कि कईने विधि जौन बटे बहनी हरे आपन विचार हम लोगन तक पहुँचावें, और का अच्छा लगत है का बुरा लगत है ओके बारे में हम लोगन के जानकारी रही, और का सुना चाहत हैं का बदलाव है तो ज़्यादा अच्छा रही, है ना।
0: मतलब बहनी हरे जैसे कार्यक्रम चाहिए हम वैसे प्रस्तुत करबे, जौन उनके पसंद के गीत हो या कुछ ऐसा कुछ खास वो चाहत हो कि इहू के बारे में जानकारी दी जाए, वो जानकारी हम सब देव। तो बहनी हरेन देर को नहीं बात कर, देखें व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया है, फटाफट देखा आज हमारे सब बहनी हरे स्मार्ट हाँ का वहाँ
1: स्मार्ट
0: सबके पास का वहाँ है स्मार्टफोन, तो फोन उठाओ और फटाफट संदेश भेज दें कि कौन कार्यक्रम में बदलाव चाहती हैं और का सुनने चाहती हैं। यही के साथ बहनी हरन से करते ही
1: राम राम, राम, राम बहनी हरे।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ता

0: पत्रकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम

0: PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 MHz पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: लीजिए अब सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। सबसे पहले विनीता तिवारी का गाया ये लोकगीत देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कहरवा, लीजिए अब सुनिए वात्सल्य मनोहर देवधर का ये देवी गीत।

इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक अनुमति दीजिए हम आपको बता दें, विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती के गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगदीश यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों इकबाल अजीम का एक शेर है, अपनी मिट्टी में ही चलने का सलीका सीखो, समंदर में चलोगे तो फिसल जाओगे।
1: नमस्कार आदाब और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफ़र सुधांशु, लेकर हाजिर हैं आपके सबसे चहेते, सबसे जोशीले और आपकी भाषा में अगर कहें तो आपके दिल के करीब जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि युवाणी।
0: तो दोस्तों, आपके रेडियो सेट्स के उस पार से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति।
1: दोस्तों, बिहारी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि बैठ ही रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देख दुपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। यानी कवि कहना चाहता है कि जेठ के गर्मी के महीने की भीषण दोपहरी का ये जो पूरा मंजर है ना, इसको देख करके जो छाँव होती है ना, जिसको जहाँ हम पेड़ों के नीचे आके बैठने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत परेशान है, वो भी छाँव ढूंढ रही है, वो भी चाह रही है कि हम कहाँ ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हमें गर्मी न लगे।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही तुमने। और बिहारी जी ने कितनी अच्छी कल्पना की होगी ना,
1: हाँ,
0: कि गर्मी का ये जो हाल है इस समय पे, वो सच में बहुत ही भयावह है। क्योंकि 45 और 47 डिग्री टेम्परेचर होना ये अपने आप में बहुत एक रिकॉर्ड के समान है।
1: बिल्कुल। और ज्योति, तुम गर्मी की जो बात कर रही हो ना, बाहर तो वो हाल है कि आदमी स्कूटर पर बैठता है तो उसे लगता है कि वो सीधे फायर स्टंट कर रहा है। आजकल तो सूरज देवता ने हम इंसानों के लिए कह दिया, एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो, जितना ज़्यादा हो सके उतना कम निकलो, और घर में रहकर ज़्यादा काम करने की कोशिश करो। और कूलर भैया तो चलते चलते उनको ऐसा लगता है कि वो हाँफ रहे हो, कह रहे हो भाई और पानी दो और पानी दो, बहुत पानी की कमी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा सुधांशु तुमने। हालत ये है कि लोग अब चाय की टपरी पर गर्मा गर्म चर्चा नहीं करते, बल्कि बर्फ के गोले खाते हुए कह रहे हैं भाई ये मौसम को क्या हो गया है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये खास चर्चा है वो इसी तपती हुई हकीकत के नाम है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हमारा हॉट टॉपिक है वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग, कारण और प्रभाव। लेकिन सुनिए ना, घबराइए मत, चर्चा भले ही गर्म है पर अंदाज बिल्कुल कूल होने वाला है। हम इसे जोड़ेंगे आपके और हमारे आज के बदलते दौर से, और साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे धमाकेदार और मज़ेदार फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे ओह ऐसा भी होता है क्या।
0: हाँ, तो फिर देर किस बात की है, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अपने पास एक ग्लास ठंडा पानी रख लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है युवानी का ये सफर।
1: तो ज्योति, सबसे पहले हमारे दोस्तों को जरा आसान और युवानी स्टाइल में समझाओ कि आखिर इस धरती को इतना तेज बुखार हो क्यों रहा है।
0: बिल्कुल, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं सुधांशु। मान लो कि तुम कड़कती हुई धूप में अपनी कार के सारी शीशे पूरी तरह से बंद करके उसे कहीं खड़ा कर देते हो। एक दो घंटे के बाद जब तुम वापस आते हो अपने और अपनी कार का दरवाजा खोलते हो, तो अंदर कैसी हालत होती है?
1: उफ, पूछो मत ज्योति, ऐसा लगता है ना जैसे सीधे किसी भट्टी में घुस गए हों, दम घुटने लगता है।
0: बिल्कुल, बस हमारी धरती के साथ भी ठीक यही हो रहा है। सूरज की जो किरणें धरती पर आती हैं ना, वो अपने साथ कई सारी मतलब गर्मी तो लाती हैं साथ में। तो जो गर्मी होती है वो हीट डायरेक्टली हमारे धरती पर पड़ रही है। तुमने ओजोन लेयर का तो नाम सुना ही होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो वो ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रही है, और साथ ही जो हमारे जो एनवायरनमेंट में कई सारी गैसेस मौजूद है ना, जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, तो ये सारी जो गैसेस होती हैं ये उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देती हैं,
1: लॉक कर देती हैं।
0: हाँ, उसको लॉक कर देती है, अपने में ट्रैप कर लेती हैं एक तरीके से। तो इसे अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट इसका नाम है।
1: और इस लॉक को मजबूत करने की चाबी हम इंसानों ने ही तो बनाई है। आज के समकालीन दौर में देखें तो हमारी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, हर घर में एसी चल रहा है भाई।

0: सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक कुछ यूं है कि गाड़ियां एकदम रेंग रही हैं और कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल खड़े करने के लिए हम असली हरे भरे जंगलों को काट दे रहे हैं। नतीजा, धरती बेचारी तप रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि आज का जो टाइम है, जहां हम लोग बहुत यूं कहें कि बहुत भौतिकवादी हो गए हैं, भौतिक चीज़ों में बहुत विश्वास हो गया है, हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेचर से कट रहे हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। हम पेड़ों को काटते हैं, है ना, कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल तैयार कर रहे हैं,
1: कह सकते हैं, क्योंकि हम घर बना रहे हैं, कहीं मॉल्स हैं, ऊंची ऊंची मीनारे हैं, तो वो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कंक्रीट के जंगल हैं।
0: सही बात है। और ज्योति, जैसा कि हम लोग जीवन की खुशी के लिए कि हमें थोड़ा सा कुछ आनंद मिले, जैसे हम बहुत थकते हैं, जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं और जैसे घर में मम्मी पापा डांट दें तो कभी लगता है यार कि हम क्या ही कर पाएंगे जीवन में, पर दुखी बहुत होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो लगता है कि कहीं ऐसी जगह कम से कम चले जाएं जहाँ पर यार कुछ देर के लिए हमें सुकून मिल जाए, हमें आनंद आ जाए, थोड़ा ठंडी हवा चलती रहे, सामने नदी बहती रहे, पक्षियों का जो उनकी जो चामी है वो थोड़ी सी हमें सुनाई दे, मतलब वो पूरा म्यूजिक होता है, जो इन्वायरमेंट का म्यूजिक होता है उसको हम पाने की कोशिश में बहुत टहलते हैं, सफ़र भी कर जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि ज़िंदगी की जो खुशी है वो आपको घरों में तो मिलती है, पर अगर आपको सही मायने में अगर खुशी खोजनी है कि जीवन का चाम कहाँ है, जीवन का आनंद कहाँ है, तो आपको प्रकृति की गोद में जाना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुधांशु तुमने, क्योंकि कभी भी जब हमें मेंटल पीस चाहिए होता है ना, तो वो मेंटल पीस हमें अपनी नेचर की गोद में ही मिलता है।
0: और सबसे बड़ी मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे आज के समाज की, आज के युवाओं की, कि हम अपनी जिंदगी की खुशी को बहुत संकुचित कर चुके हैं। मतलब अगर हमें, जैसे कि हमारा, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और हमें, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि एक समय हुआ करता था ज्योति कि जैसे घर में कुछ खाने के लिए पहले बचपन में आता था तो हम बहुत खुश होते थे कि चलो ये आया बाजार से, वो आया बाजार से। एक समय ऐसा आया कि मोबाइल फोन के लिए, कि हमें मोबाइल फोन 2 मिनट के लिए मिल जाए, 10 मिनट के लिए मिल जाए, जब तक अपना पर्सनल नहीं था, बहुत खुशी होती थी, लगता था अरे यार यही तो सब कुछ है। थोड़ा सा बड़े हुए, 12th में गए, ग्रेजुएशन किया, तो लगा यार जीवन की जो खुशी है उसमें कहाँ है, जीवन की खुशी तो कॉलेज घूमने में है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने में है, सब कुछ करने में। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो जिंदगी की खुशी के जो मायने होते हैं वो बदलते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। तो मुझे लगता है सुधांशु कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने दोस्तों को की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है।

0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि गंभीर मुद्दे पे थोड़ा हमने चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ हम आपको मनोरंजन का तड़का भी देंगे, सो
1: अरे
0: हमने दे भी दिया।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, सीट बेल्ट जो होता है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा बांध लीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं कुछ कड़क और अनोखे फैक्ट्स के साथ।
0: बिल्कुल। तो अगर हम कुछ रिसर्च और साइंटिस्ट की माने, तो अगर तापमान इस गति से बढ़ता रहा ना दोस्तों, तो इस सदी के अंत तक दुनिया के कई आलिशान तटीय शहर जैसे मालदीव, वेनिस और हमारे भारत की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई का एक बड़ा हिस्सा समंदर के पानी में समा सकता है। यानी आने वाले वक्त में वहाँ वीकेंड मनाने के लिए हम अपनी गाड़ियों से नहीं जाएंगे, हो सकता है कि हमें वहाँ पर नाव लेकर जाना पड़े।
1: ज्योति, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अब साफ दिखने लगा है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो मौसम का पूरा पैटर्न बदल चुका है।
0: बिल्कुल।
1: जब बारिश होनी चाहिए तब सूखा पड़ जाता है, और जब किसान की जो फसल है कटने पे होती है तो भगवान कहते हैं कि भाई बेमौसम बारिश करो, ओले गिराओ और सब कुछ करो, तो बहुत परेशानी हो जाती है, कहने का मतलब
0: बिल्कुल
1: ये है।
0: सही कहा सुधांशु तुमने। हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स जो हैं वो कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। तुम्हें याद है कि 2020 में कैसे कोरोना आया था?
1: हाँ
0: और कोरोना के समय में पूरी दुनिया थम गई थी, और हमारे ना तो रोड पे गाड़ियाँ थी, ना ही लोग थे, ना
1: हाँ
0: कोई फैक्ट्रियाँ चल रही थी, ना ही कुछ। तो उस समय जो एक वातावरण था,
1: हाँ
0: कहीं
1: हाँ
0: ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारी धरती को सांस आई थी उस समय।
1: सही बात है। और इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो फिर उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है।
0: बिल्कुल। और तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक तरीके से वायरस की तरह भी हो सकता है ना, कि जो तेजी से एक्टिव हो रहा है और जिससे नई नई बीमारियां फैल रही हैं, है ना?
1: समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे युवा साथी इस तस्वीर को बदल सकते हैं, वो भी बहुत ही कूल और आसान तरीके से।
0: बिल्कुल, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होनी होती है। जैसे 24 डिग्री का फॉर्मूला हर घर पर एसी को 16 या 18 पर ना चलाकर 24 डिग्री पर सेट करें, बिजली बचेगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी।
1: दूसरी चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर छोटी दूरी के लिए बाइक या कार का यूज़ ना करें, प्लास्टिक को कहें बाय बाय, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें, और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन के हर खास

0: मौके पर, चाहे वो आपका बर्थडे हो, कोई अचीवमेंट आपने हासिल करी हो या एक पौधा इस दौरान ज़रूर लगाएं। उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आप कर सकते हैं #GreenWarriors लिख करके, लेकिन साथ ही उसकी देखभाल भी आपको करनी पड़ेगी।
1: क्या बात है सुधांशु, धरती हमारी माँ है और अगर माँ बीमार होगी तो बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। इस समकालीन चुनौती से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम युवाओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये।
0: बिल्कुल सही। तो दोस्त, आज की इस गर्मा गर्म लेकिन बेहद ज़रूरी चर्चा में ये बातें हमने जो आपसे की हैं वो इसलिए की हैं कि आप इस पर थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, क्योंकि ज़रूरत है आज, और हमें आज सही मायने में अर्थ वॉरियर बनने का संकल्प भी लेना है। अच्छा ज्योति, तुम्हें एक चीज़ पता है, अभी IPL चल रहा था है ना, तो IPL में एक IPL ने एक मुहिम चलाई हुई थी। उस मुहिम में यह था कि ग्रीन बॉल नाम का एक कह सकते हैं कि एक तरीका उन्होंने अपनाया हुआ था कि जितनी भी ग्रीन बॉलें होंगी, मतलब जितनी भी बॉल हम डॉट करेंगे उसको हम ग्रीन बॉल समझेंगे, और ग्रीन बॉल के परिप्रेक्ष्य में हम एक पेड़ लगाएंगे, अच्छा। प्लांटेशन करेंगे। तो ये एक अच्छी मुहिम है हमारे समाज के लिए।
1: बिल्कुल अच्छी मुहिम है। खैर लेकिन सुधांशु, IPL तो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम अपने दोस्तों को ये कह सकते हैं कि अगर किसी दिन, जब हर दिन किसी ना किसी का बर्थडे होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका भी जिस दिन बर्थडे हो उसे उस दिन एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और वो एक तरीके से उनके लिए भी अच्छा है कि वो पेड़ जो है उनके साथ साथ उम्र भर साथ रहे।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है, और ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारे हाथ का लगाया हुआ पेड़ हमारी उम्र के साथ बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और एक समय ऐसा आता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं और वृक्ष जवान होता है, तो हमें बहुत अच्छे फल देता है, छांव देता है, और हमारे रहने ना रहने के बाद भी वो हमारी फैमिली को, हमारे घर के लोगों को वही सम्मान, वही प्यार, वही प्रेम देता है जो फ्रॉम बिगिनिंग
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, एक शेर है, रेत भरी है इन आँखों में, आंसू से तुम धो लेना, कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट कर रो लेना,
0: उसके बाद बहुत तनहा हो जैसे जंगल का रास्ता, जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना।

0: दोस्तों, कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, जन्म जन्म की प्यासी है, साहिल पर चलने से पहले अपने पांव भिगो लेना।
1: मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना।
0: रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। दोस्तों, ये शेर है बशीर बद्र साहब का, पर कितना सारगर्भित है और कितनी बड़ी बात है कि नदी होना, वृक्ष होना और उसे भी बड़ी चीज़ धरती होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, परोपकार की भावना अगर आप में है वृक्ष की तरीके से, कि अगर आप उसमें फल पैदा कर रहे हैं, उसमें फल हो रहा है तो अपने लिए नहीं हो रहा है, वो उसके नीचे बैठने वाले राहियों के लिए हो रहा है, आसपास के लोगों के लिए हो रहा है। अगर ऐसी परोपकार की भावना जैसे नदी में होती है, जैसी धरती में होती है, जैसा किसी वृक्ष में होता है, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
1: बिल्कुल,
0: और दुनिया की सारी अचीवमेंट इसके आगे कहीं ना कहीं कमतर हैं, क्योंकि जहाँ पर उपकार की भावना नहीं, जहाँ पर परोपकार की भावना होती है, वो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी होती है।
1: बिल्कुल सुधांशु, और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड लग रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी कि प्रेरणा पुंज पर। सुधांशु, पता है आज जब सुबह मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, हर दूसरी रील में कोई ना कोई पहाड़ों में वर्क फ्रॉम होम कर रहा था।
0: अच्छा।
1: कोई ट्रैकिंग कर रहा था, तो कोई कैफे में बैठकर पहाड़ी वाइब्स को एंजॉय कर रहा था। हम यूथ्स को पहाड़ों और हरियाली से कितना प्यार है ना, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे।
0: प्यार तो है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये प्यार सिर्फ एस्थेटिक रील्स और कैप्शन तक ही सीमित है। जब पहाड़ों में पेड़ कटते हैं, लैंडस्लाइड होती है या शहरों में सांस लेना भारी हो जाता है, तब हम सिर्फ सोशल मीडिया पर सैड रिएक्ट करके छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल सही बात पकड़ी तुमने। आज हम कूल दिखने के लिए एनवायरनमेंट की बातें तो करते हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले, यानी कि सोचो 50 साल पहले कैसा समय रहा होगा। तो आज से 50 साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ऐसा शख्स था जिसने बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना किसी ट्रेंडी हैशटैग के, पूरी दुनिया के युवाओं और महिलाओं को प्रकृति के लिए लड़ना सिखाया।
0: जी हाँ दोस्तों, आज प्रेरणा पुंज के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं असली एम्प्लूसर की, सुंदरलाल बहुगुड़ा जी की। इनका जन्म 9 जनवरी वर्ष 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। मात्र 13 साल की उम्र में टिहरी के महान क्रांतिकारी अमर शहीद श्रीदेव सुमन के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगुड़ा के जीवन की दिशा और दशा बदल गई। श्रीदेव सुमन से प्रेरित होकर वो बाल्यावस्था में ही आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। सुंदरलाल बहुगुड़ा वो व्यक्ति हैं जिसने भारतीयों को पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों को गले लगाना सिखाया था।
1: इन्होंने हमें बताया कि अगर आज हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो कल रील्स बनाने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड में असली पहाड़ और पेड़ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की दीवारें होंगी।
0: दोस्तों, जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं, एक शानदार करियर, अच्छी सैलरी और एक सेट लाइफ मान लीजिए। सुंदरलाल बहुगुड़ा जी भी जब युवा थे ना, तो वे राजनीति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। वो चाहते थे बड़े नेता बनकर ऐशो आराम की ज़िंदगी, अगर वो चाहते तो जी सकते थे।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ एंट्री होती है उनकी लाइफ पार्टनर यानी कि विमला नौटियाल जी की। विमला जी खुद गांधीवादी विचारों वाली थी। उन्होंने युवा सुंदरलाल के सामने एक ऐसी

0: रखी जो आज का कोई युवा शायद ही सोच पाए। उन्होंने कहा, मैं शादी तभी करूंगी जब आप ये चमचमाती हुई राजनीति छोड़ेंगे और मेरे साथ पहाड़ों के सबसे पिछड़े गांवों में चलकर लोगों की सेवा करेंगे।
1: वाह, आज के दौर में जहां लोग पार्टनर से बंगला गाड़ी की उम्मीद करते हैं, भाई सही बात है, वहां विमला जी ने सादगी और समाज सेवा को चुना है। और सुंदरलाल जी ने भी बिना सोचे अपनी पूरी राजनीति लाइफ को कहा, भाई बाय बाय, यहीं तक था सफर।
0: यहीं से एक आम नौजवान पर्यावरण का प्रहरी बनने की राह पर निकल पड़ा। उन्होंने गांव-गांव जाकर शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया, दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने साबित किया कि अगर युवाओं में जज्बा हो तो वो जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं।
1: आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ट्री हगिंग, यानी पेड़ को गले लगाकर स्ट्रेस कम करना। लेकिन क्या हमारे युवाओं को पता है कि ये ओरिजिनल आइडिया हमारे देश के चिपको आंदोलन से ही संबंधित है?
0: बिल्कुल। साल 1973 में जब कॉरपोरेट ठेकेदार उत्तराखंड के जंगलों को काटने आए तो वहाँ की आम महिलाओं और युवाओं ने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने कहा, काटना है तो पहले हमें काटो। सुंदरलाल बहुगुणा जी जब इस आंदोलन से जुड़े तो उन्होंने इसे युवाओं का आंदोलन बना दिया।
1: उन्होंने एक नारा दिया था जो आज के हर उस युवा को दीवार पर लिख लेना चाहिए जो सस्टेनेबल लिविंग की बात करता है। क्या है जंगल के उपकार, कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार।
0: सोचो सुधांशु, उस दौर में जब हम ना तो सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था और ना ही कोई पीआर एजेंसी, बहुगुणा जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि पूरे 5,000 किलोमीटर के पैदल यात्रा की, सिर्फ इसलिए ताकि देश का युवा जाग सके और जान सके कि पर्यावरण कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है।
1: हाँ।
0: उनकी इस जिद का नतीजा था कि सरकार को झुकना पड़ा और पहाड़ों में पेड़ों की कटाई को रोकना पड़ा।
1: आज का युवा जब किसी चीज़ के खिलाफ खड़ा होता है तो वो डिजिटल प्रोटेस्ट जैसा करता है।
0: हाँ,
1: प्रोटेस्ट करता है। लेकिन बहुगुणा जी का तरीका था कि खुद को तपा दीजिए। जब टिहरी में इतना बड़ा बांध बन रहा था जो पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा था, तब उसके खिलाफ अकेले खड़े हो गए।
0: हाँ, उन्होंने नारा दिया, हिमालय बचाओ देश बचाओ। उन्होंने भागीरथी नदी के किनारे हफ्तों लंबा उपवास किया।
1: एक बार तो पूरे 74 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। आज के समय में हम एक दिन अगर फास्टिंग कर लेना तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी दोस्तों। हालांकि बांध बना और उनका अपना घर, उनका पुराना टिहरी शहर पानी में डूब गया। उन्हें बहुत दुख हुआ लेकिन उन्होंने हार फिर भी नहीं मानी। उन्होंने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि विकास के नाम पर विनाश को स्वीकार नहीं करना है और नहीं किया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और उन्होंने हमें सिखाया कि जब बात सही कॉजेस की हो तो दुनिया चाहे आपके खिलाफ खड़ी हो, आपको अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। दोस्तों, साल 2009 में भारत सरकार ने सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से नवाजा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले 1981 में उन्होंने पद्मश्री अवार्ड को लेने से मना कर दिया था।
1: उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे देश में पेड़ कट रहे हैं मैं कोई सम्मान नहीं ले सकता। क्या एटीट्यूड था! आज के समय में जहाँ लोग छोटे छोटे क्रेडिट्स के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उसी में मर जाते हैं, वहाँ उन्होंने इतना बड़ा सरकारी सम्मान ठुकरा दिया। साल 2021 में 94 साल की उम्र में ये महान वृक्ष मित्र हमसे दूर चला गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे सामने है।
0: बिल्कुल। आज जब हम दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में प्रदूषण से हाफ रहे हैं, जब गर्मियों में पारा 45 से 50 डिग्री छू रहा है, तब हमें बहुगुणा जी की सबसे ज़्यादा याद आती है। क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भविष्य में होगी, वो अभी हो रही है।
1: और इसलिए आज के युवाओं के नाम सुंदरलाल जी का एक ही संदेश था कि प्रकृति से उतना ही लो जितनी ज़रूरत है, लालच के लिए ये पूरी कायनात भी कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब पहाड़ों में घूमने जाइए तो वहाँ कचरा मत छोड़ के आइए, और हो सके तो अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाइए। यही बात सुंदरलाल बहुगुणा जी को हमारा असली ट्रिब्यूट होगा।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव

0: पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में। आज हमारे सेगमेंट में है करियर की बात। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुछ ऐसी जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और आप उस वैकेंसीज की बात करते हैं जिसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, है ना। दोस्तों अगर हम पहले रिक्रूटमेंट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RO AR का विज्ञापन जारी कर दिया है रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। अगर हम इसमें पात्रता की बात करें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और अगर आपके पास ओ लेवल की सर्टिफिकेट और CCC की सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म

0: तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में। आज हमारे सेगमेंट में है करियर की बात। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुछ ऐसी जानकारी लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप उस वैकेंसी हम उस वैकेंसीज की बात करते हैं जिसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, है ना। दोस्तों अगर हम पहले रिक्रूटमेंट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने RO AR O का विज्ञापन जारी कर दिया है रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। अगर हम इसमें पात्रता की बात करें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और अगर आपके पास ओ लेवल की सर्टिफिकेट और CCC की सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म की जो डेट स्टार्टिंग डेट है वो 1 जून 2026 से है, यानी कि कल से, और लास्ट डेट जो इसकी है वो 21 जून 2026 है। और दोस्तों इसकी मिनिमम एज 18 साल है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, मैक्सिमम एज 21 साल RO AR O के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित हम और जानकारी प्राप्त करें तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
1: इसी के साथ दोस्तों SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2026 की भी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। इसकी अप्लाई करने की जो तिथि थी वो 21 मई 2026 से चालू है, और इसी के साथ जो इसकी आखिरी तिथि है अप्लाई करने की वो है 22 जून 2026।
0: दोस्तों इसके अलावा UP SSSC लोअर BCS रिक्रूटमेंट 2026 का विज्ञापन जारी हो चुका है। इसकी अप्लाइंग डेट स्टार्ट है फॉर्म 29 मई 2026 से और इसकी लास्ट डेट है 18 जून 2026। दोस्तों इसके लिए वही व्यक्ति पात्र है जिसने UP SSSC पेट स्कोर, मतलब UP SSSC का पेट एग्ज़ाम होता है, अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है उसके कट ऑफ में अगर आप हैं, और इसके साथ अगर आपके पास कोई भी किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आप 40 साल तक में भी आप दिख सकते हैं।
1: इसी के साथ DSSSB ने भी वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी करी है। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 16 जून 2026 से और इसकी आखिरी तिथि होगी 15 जुलाई 2026। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 20 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 से 37 वर्ष।
0: दोस्तों इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का भी सेगमेंट लेके आते हैं, और इस सेगमेंट के तहत जैसा कि हमने कल आपको जो प्रश्न दिया था वो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर ये है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है।
1: और वहीं अगर हम बात करें कि हमारा आज का सवाल क्या है, तो हमारा आज का सवाल है कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इसका जवाब आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। अगर आप चाहें तो आप हमें नंबर भी हमारे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम का रिव्यू भी हमें भेज सकते हैं।
0: लेकिन रिव्यू आप किस पे भेजेंगे इसका पता हम आपको ज़रूर बताएंगे, पर गाने के उस पार।

0: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
1: तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप हमें अपना कुछ रिव्यू देना चाहते हैं तो आप हमें अपना रिव्यू दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हमें यानी सुधांशु को
0: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। 6 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे खेल दर्पण कार्यक्रम। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन होगा। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कहकशां। 7:31 पर संस्कृत वार्ता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोफेसर देवदत्त शरीर की वार्ता, संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय भावना। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिवानी के सरवानी के स्वर में भजन होंगे। सबरस का समय होगा रात 8:30 का। 8 बजे आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आनंद लेंगे आप फिल्म संगीत का। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन होगा। 7:31 पर कार्यक्रम होगा बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8:30। कल प्रातः 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर जय प्रकाश यादव से सुरेश कुमार की बातचीत होगी इस मौसम में पशुओं की बीमारी और उनसे बचाव विषय पर। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर विजय शर्मा की वार्ता होगी पायरिया, कारण, लक्षण और उपचार। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन होगा। कल प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम होगा जिसमें कल आप सुनेंगे प्रोफेसर सालेहा रशीद से मकाला और तकरीर, विषय शिबली नोमानी की मायानाज तस्नीक, और कलामे शायर में शायर होंगे डॉक्टर जफरुल्ला अंसारी। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 9:50 पर जिसमें आप सुनेंगे प्रियंका त्रिपाठी के गाए गीत और भजन। 10:05 पर कार्यक्रम होगा वॉइस ऑफ प्रयागराज। प्रायोजित कार्यक्रम

ERT 10:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे एक ही कलाकार। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन होगा। हेलो फरमाइश का समय होगा दोपहर 12:30 का। 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। दिन में 2:30 लोकगीत होंगे, कलाकार सुखनंदन और साथी, विनीता तिवारी और विकास चंद पांडे और उनके साथी। शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में राजेश राज पुरोहित से आप सुनेंगे नीति वचन। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: बनेंगे हम,
1: आकाश तक बढ़ेंगे हम,
0: कदम बढ़े तो बढ़ चले आकाश तक बढ़ेंगे हम,
1: आकाश तक बढ़ेंगे हम,
0: लड़े हैं लड़ रहे हैं तो जहान से लड़ेंगे हम।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सा रेखांकितवती यत सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्च शिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपि तु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्य उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
0: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगत मासे 23.20 अर्बुद रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्ति कृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केंद्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुम् इच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्ति पूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वं 80+100 दिनानां अवधे समाप्त्यानन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समयसीमा अध्यर्थनातन्त्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलम् आपत्कालपरिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति। प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जालमाध्यमेन अध्यर्थनाप्रणालिः योजितास्ति, केनापि आदेशेन प्रभावितः जनः अधुना आव्रजन विभागायुक्तम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रार्थयितुं शक्नोति। अध्यर्थना आदेश प्राप्तिसमयात् 30 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। आयुक्तः संबंधित पक्षं संश्रुत्य निर्णयं दास्यति, अपि च विषयस्य समाधानं 60 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिः शीलनागु श्रीचन्द्रशेखरः संजीव सचदेवा अरुणपल्ली वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालये कॉलेजियम इत्यस्य अनुशंसां पालयता यः एव एतेषां नियुक्ति विषयकी स्वीकृति प्रदत्ता। एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अध्यादेशः इत्यस्य प्रतिष्ठापनानन्तरं कृता सन्ति। अधुना भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सह सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशां स्वीकृता संख्या 34 समेध्य 38 यावत् कृतास्ति। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपतिः मेरियो वोग्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे भाषमाणः डॉ सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति। अपि च जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रौद्योगिकी।

0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अंतरराष्ट्रीय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति। डॉक्टर सिंह कथयत् यत् भारत जर्मनी देशौ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जनसंबंध चेत्यादिषु विषयेषु एकस्य सुदृढ़ सहयोगस्य आदान प्रदाने कुरुतः। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह श्वः नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्वाचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पंचायतेभ्यः नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सकल विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तम कार्य प्रणाली उपलब्धीं चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग इत्यनेन राजस्थान गुजरात पश्चिम मध्य प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेशस्य तटवर्ति क्षेत्रेषु दिनसमये गर्जनेन विद्युत तरंग चमत्कृतेन च सह झंझावातस्य संचेतना प्रवर्तितास्ति। कर्णाटकस्य आंतरिक क्षेत्राणि केरलम माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु श्वः यावत् तीव्र वृष्टिः भविष्यति। आगामिषु दिवस त्रयेषु हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात गोवा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभृतिषु क्षेत्रेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य विद्युत तरंग चमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमण मुक्ति योजनां निर्मातुं तां च प्राथमिकाधार रूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालयः अतिक्रमणं कुर्वन्तः सर्वान् अष्टादशाधिकैकशतं सेवानिवृत्तान् सर्वकारीय कर्मचारिणः विरुध्य अनुशासनात्मकं वैधानिकं च कार्याचरणं प्रवर्तयितुम् आदेशं प्रायच्छत् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: घनचौर राम राम। आ घनश्याम भैया का हाल चाल बा हो?
1: ए बैजू भैया देखा हाल चाल ते निक बा हो। खेती किसानी में देखा मन लगल हो, ये समय पूरी तैयारी चलत हो।
0: इस समय तो हम तो कही खरीफ का मुख्य फसल धान नर्सरी जोन बाटे डाले तहन किसान भाई जोन बा है। और मुन भाई देखा गर्मियों बहुत बहो
1: गर्मी भैया देखा हो बाय। लेकिन एक बात होने भैजू भैया कि गर्मी का समय आवत हो पूरा ध्यान पानी पे जाला।
0: ये बात तो सही कहा भैया, पानी तो कहूँ कहूँ पिए के नहीं रही जात साफ पानी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: भैया, जलस्तर इतना नीचे चला जाता
1: काहे न चलत जाई हो भैजू भाई की देखा एक जमाना रहे हो कि तालाब पोखरा गढ़ी गुच्चा इतना रहे कि भैया बारिश का पानी हो तो भैया उमन से धीरे धीरे जमीन के अंदर जात रहे
0: भाई। पहले ही बड़े तो जल स्तर इतना ऊपर रहा है, बारिश वरिश में तो लोग कुआं में कहा ना हाथे से ऐसे
1: पानी निकल जाए पानी निकल। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो भैया हो ताका कुआं में न
0: पानी
1: तो
0: ना दिखा
1: ना ही दिखात बार।
0: सही कह भैया।
1: तो भाई देखा ये चिंता का विषय हो बजू भाई।
0: चिंता का विषय तो है ये भैया हो, पानी कहे जाते ना पानी ना ही तो जिंदगानी
1: जिंदगानी नहीं,
0: जल है तो कल है। तो भैया हो हम कही पानी बचाओ बहुत जरूरी बा, ना ही हम तो दका देख ले थे आवे वाले समय में पानी ही न रह जाए। अब पानी ना रहे तो कल्पना करा कि का हुए न खाए कल बंजर सब हो गए।
1: ये देखा बजू भैया विकास भी अच्छी चीज हो, विकास भयल भैया सुविस्ता हुई गल नहीं हो। पहले देखा पानी

0: जरूरत रहे कुआं से ना जांगर लगाए कि खींचे के होत रहल, तो जहाँ चार बल्टी के जरूरत रहे वहाँ दुइये में काम चलत रहे,
1: नार मोट चलत रहा।
0: हाँ।
1: पतली नारी से खेत सिंचाई हो जात रही।
0: बिल्कुल।
1: अब का करते हैं भैया, पानी खोल दे नाली में, कहूँ आधा जात खेते में आधा बहत बे, और जितना जरूरत ना उससे ज्यादा भर जात बे खेते।
0: वो तो भैया मुहैया हो देखा अब तो भैया ना घरे घरे हो समर सेबुल लग गल, गदेलन के भैया हो नहाए के होत बा बटन दबाए देत बा, नहाए के जाए के घरे में बैठत बा भुलाए जात हैं बंद कर।
1: हाँ, पानी बहत बा, एक बाल्टी की जरूरत तब उस बटन दबाए देता।
0: यह तो भैया हो ये आज नीक लागत हो भैजू, एक समय होई भाई की बड़ा तकलीफ बुझाई।
1: नीक नहीं है भाई, परेशानी बे, समर सेबुल बताओ था, जहाँ समर सेबुल जकरे नहीं लागू छोटका नल बे ना, उसमें पानी ही ना आवत बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
1: नीचे चला गया जल स्तर। भैया हो हम तो कही कि पानी बचाओ बहुत जरूरी बा, आवे वाले कल में अपने लड़कन के देलन के उनके पीढ़ी के पानी सुरक्षित करे के बा, वह समय हरा भरा रहा जवन बाटे खेत की यारी पेड़ पौधा, तो भैया आज एक एक बूंद बचाओ जरूरी बाटे।
0: जरूरी है बैजू, लेकिन ये समझा कि जोन आज गदेला है ना, यह काल ही के भैया जानकार हुई है जिम्मेदार हुई है, तो हमार त्योहार देखा ये कर्म धर्म बनत हो कि इनके पानी के महात्म समझावल जाए।
1: ये बात तो सही कहा,
0: गदेलन के बैठा के समझावल जाए कि पानी भैया जोन प्रकृति अमृत दहले बाय, एकर भैया संरक्षण हो जरूरी हो, और ना हो संरक्षण तो ऐसे का दिक्कत आई का परेशानी आई। ऐसे तो कहानी सुनाओ बटन कि कहो हमार तोहार बचपन रहे तो भैया हो नार खो हमेशा पानी से भरल रहे, जानवर बायन हो पशु बायन जाए के पानी पियत रहे, इतना निर्मल पानी रह रहे हो कि अगर आड़ बीड़ में भैया अगर ऐसा दिक्कत आवे तो मने यू पियत रहन।
1: भाई बहन तालाब में साफ सुथरा,
0: हाँ
1: कुछ तालाब ऐसे रहन भाई, पशु हमें नहाए पानी पिए, चिड़ई चिरुमन पानी पिए।
0: बिल्कुल,
1: तो देखत है हो गर्मी में ना चिड़ैन के पानी नहीं मिले तो कहूँ कहूँ वो परेशान नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कहानी कहला है ना कि भैया बारिश के समय में हो हाथे से बल्टी डाल के कुआं से पानी निकल जाए, आवे वाले समय में जब गदेला ये सब सुनिए न तो भैया उनके आश्चर्य हुई भरोसे न हुई।
1: तो भैया हो हम तो कही आज से कदम उठावे चाहे, पानी बचावे के चाहे, प्रयास करे चाहे, कम से कम पानी इस्तेमाल करा। हाँ, अब जोन बाटे ही भैया नहाए धोए में, कपड़ा धोए में, सिंचाई में भी अब तक नई नई विधि आई गई है, वही विधि से टपक सिंचाई।
0: हाँ,
1: विधि
0: बिल्कुल,
1: हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो पानी के बचत होए, कहूँ कहूँ नल लगा है तो देखे में आओ तो चुवत रहा, तो भाई उका जे भी देखे बंद कर दी नहीं हमार तो ना हो।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ, हमार हो तब बंद कर भाई, पानी बचावे के बाद जहाँ देखा अगर खराब हो तो बंद कर जोन बाटे
0: भैया हो। देखा गर्मी में ज्यादा देखे में आवत है ना कि भैया हम मार दे के पानी दमारत लोग।
1: अरे कुछ पूछा जिनकी
0: भैया हम कहीं कि ठीक बाय धूर बाय ओके दबाव के बाद, लेकिन जैसे बात की ला कपड़ा धोत बटा बर्तन धोत बटा तो पनिया उमन बचत बाय,
1: काहे नहीं
0: तो वही पनिया की दवार दा
1: दवार दे, उसका पेड़ पौधा में
0: डाल दे। हाँ,
1: कपड़ा वपड़ा धुलता है भाई उसे दवार दे। अब देखे में आवत है ना कि आजकल तो देखा गाँवों में लोग पानी जोन फिल्टर कर जाए था वो लगाए ले हैं मशीन, और हमें जितना फिल्टर हो तो ढेर पानी होकर खराब हो,
0: ढेर हो उसे कई गुना पानी,
1: तो भैया
0: लगातार पनिया खराब हो,
1: पानी खराब हो था ओकर नाली ओली में बहावे के बजाय उलैजा पेड़ पौधा में डाला, ओकर बर्तन धोला कपड़ा धोला,
0: बर्तन धोए में अच्छे से काम हो सकत
1: तो उपयोग हो जाए भैया, वो जो बात है
0: सजग रह के देखा जरूरी हो बैजू भाई। अब अभी तक वैज्ञानिक भैया लोग कहत बटन टेंशन की बात बत कई में भी होत बा, लेकिन कल के लिए पछताए के पड़ी हो फिर समय वापस ना आई।
1: तो भैया हो जल बात कल बा, कल का अगर खुशहाल रखे के बात आज जल बचाओ बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अकरे साथे साथे जल तो बचाओ बे, अपन माटी भी बचाओ जरूरी बे, संरक्षित करब जरूरी बे।
0: बिल्कुल हो, हम कहीं खेती किसानी अगर माटी मजबूत ना रही ना भैया तो खेती किसानी हो ही कैसे
1: भाई। अब माटी भी तभी सुरक्षित रहे जब पानी पाए, नहीं तो बंजर हो जाए पानी
0: हो जाए हो जाए भैया। अब माटी बिगड़ल तो भैया ये नहीं खाली खेती है प्रभावित हो पर, भैया पर्यावरण से लेके सब कुछ उसे प्रभावित हो जाए।
1: तो भैया हो मृदा संरक्षण बहुत जरूरी बा, ओकरे लिए भाई ऐसा भाई पेड़ लगावे चाहे जैसे माटी का कटाव ना हो, काहे में होत है कि अगर माटी मान लो वैसे बा बारिश तेज भाई तो कटाव हो जाते है,
0: कटाव भैया
1: उपजाऊ माटी बह जाते
0: बह जाते हो ढलान पे खेत है तो सीढ़ी नुमा होके बनाए।

0: झकड़ादार जड़ वाली पेड़ रहे
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल
0: रुक जाता है। एक अलावा
1: मेड़बंदी बहुत जरूरी है भैया। हाँ अब देखा समय भी बा कि अब एकदम मेड़बंदी दुरुस्त करें। अब भैया खेत का माटी न बह पावे एकरे बदे पूरा प्रयास करें।
0: ये बात तो सही कहे, तो किसान भाई बारे में सोचे ही ना बल्कि कर रहे हो।
1: करें करें बिल्कुल।
0: तो भैया हो ये तो देखा का कहा थी चर्चा का बात रही, आज देखा रामायण पाठ भी सुनवाई जाए मंगलवार है हैं। एकरे अलावा देखा हम खेती किसानी आजकल जौन बा जितना भी खेती किसानी में साग सब्जी खास करके देखा सब में किरवा बेरामी लागत है, तो हमें तमाम तरह के कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी कीटनाशी तो जहरीली होती देखे में और कहूँ कहूँ दुर्घटना भी हो जाता है। तो भाई ओकरे प्रयोग में का सावधानी बरते चाहे भी बात बात कही सुनवाई जाए, उन पहले आवा गीत गौ नहीं सुनवाई दिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया हो, तो देखा बाबूलाल दिवाकर भैया ढोलक मजीरा के साथ बैठल बटन, तो भैया से आवाज सुनल जाए विकास की
0: सुनवाओ भैया।
1: हाँ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: भैया हमको ये देखा बाबूलाल दिवाकर गौने किसान भाई, सुने ना, सनेश भी सुने,
7: खूब खूब भैया।
6: देखा आज मंगलवार है, आज के दिन हम सब रामायण पाठ जो रामचरित मानस से सुनवावा जाते हैं किसान भाई। अब भैया हो, हमें कुछ न कुछ ऐसा प्रसंग हो थी, ऐसा सनेश छिपा रहा था जो ने से भैया हो मन तो खुश हो भी करत है, बहुत
7: जीवन जिए के प्रेरणा भी
6: प्रेरणा मिलत है, सीख मिलत है जौन बात है। तो आज रामायण पाठ जौन बाबू श्री श्यामाचरण पांडे जी कहे बाटे ना, तो किसान भाई एक सुने जो।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
8: यह रामायण पाठ लघु कथा उत्तरकांड से है, संत असंतों के लक्षण का वर्णन है।

कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर शरीर वाले दयालु सुंदर कमल नयन कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती जी के पति श्री महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूं।

श्री भरतलाल जी कहते हैं, हे स्वामी, मुझे स्वप्न में भी संदेह, दुख और मोह नहीं है, यह केवल आप ही की कृपा है।

गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, हे भरतलाल जी, श्री भरतलाल जी कह रहे हैं, हे दयानिधान, मैं सेवक और आप सेवक के सुखदाता हैं। हे रघुनाथ, संतों की महिमा बहुत तरह से वेद और पुराणों ने गाई है और आप भी अपने मुख से बड़ाई किए हैं। हे स्वामी, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। हे दया सिंधु दया सागर, संत और असंत दोनों के भेद अलग अलग बताकर कहिए। श्री राम जी बोलते हैं, सुनो भाई, संतों के लक्षण तो असंख्य हैं, जो वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंत की ऐसी करनी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी की होती है। हे भाई, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन उसे अपना गुण देकर के सुगंधित कर देता है।

करता है और कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में गर्म करके घन से पीटा जाता है, उसे यह दंड प्राप्त होता है। संतजन विषय से दूर शील तथा गुणों की खान होते हैं, वह पराये दुख की देख दुखी और पराये सुख को देख सुखी होते हैं, इसी से उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे अभिमान रहित और विरक्त होते हैं, लालच भय आनंद को त्याग देते हैं, उनका चित्त कोमल होता है, वे दीनों पर दया और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरतलाल, ऐसे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं, वे कामनाओं से रहित होकर मेरा नाम जपते हैं और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है। हे भाई, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सच्चा संत जानना। जिनको निंदा स्तुति दोनों समान है, मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, ऐसे संत मुझे प्राणों के समान प्यार

रहित होकर मेरा नाम जपते हैं और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है। हे भाई, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सच्चा संत जानना। जिनको निंदा स्तुति दोनों समान है, मेरे चरण कमलों में जिनका प्रेम है, ऐसे संत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं।

बात। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भरत भाई अब असंतों का स्वभाव सुनो, उनकी संगति कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति सदा दुख को देने वाली होती है। वह सदैव पराई संपत को देखकर जलते हैं। वह काम क्रोध मद लोभ में लिप्त तथा निर्दयी कपटी बिना कारण सभी से बैर करने वाले होते हैं। ऐसे मीठे वचन बोलते हैं जैसे मोर मीठे स्वर से कुहकता है, परंतु उनका हृदय ऐसा कठोर होता है कि अत्यंत विषैले सर्प को भी खा लेता है। पराई स्त्री पराए धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं।

माही गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, असंत लोग माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, मैथुन करना पेट की चिंता में लगे रहना यमपुरी का उन्हें भय नहीं होता है। जब कोई विपत्ति में रहता है तो उन्हें खुशी प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, भरत भाई संत जन भगवान की कथा उन्हें अच्छी नहीं लगती है। भगवान आखंड पाखंड और कपट हृदय में भरे हुए और ऊपर से अच्छा भेष बनाए रहते हैं संत का, ऐसे नीच और खोटे मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़ा होते हैं और कलिकाल में झुंड के झुंड होते हैं।

0: प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भाई, दूसरे के उपकार के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरों के कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य मोह के अधीन होकर के अनेकों पाप करते हैं उनका परलोक नष्ट हो जाता है। जो परम चतुर हैं वे जगत को दुखमय समझकर मेरा भजन करते हैं।
1: भैया, हम तो भाई देखा ना, भाव विभोर हो गए भाई। गजब का रामायण पाठ रहा भाई। संत असंत का पहचान गुण लक्षण सब है।
2: बिल्कुल,
1: श्री श्यामाचरण पांडे से किसान भाई रामायण पाठ सुनन।
2: खूब खूब भैया,
1: भाई अच्छा भी लगा हुए। अब देखा बात बत कही करत रहे भैया हो, क्योंकि कीटनाशक के बारे में भाई, कीटनाशक के प्रयोग में का सावधानी बरते चाहे। डॉक्टर ऋषि सेवक से प्रवीण कुमार मिश्र के बात बत कही बा, किसान भाई एक सुनई और गुनई।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: किसान भाई खेती किसानी में देखा फसल को, जब हम कोनो भी फसल का उत्पादन ले थी तो ओकर हर तरह से भाई देखभाल जरूरी होता है। और बहुत से ऐसे फसल हैं भाई जहाँ कीट पतंग और भाई लागे के खतरा ज़्यादा रहा था, तो एका दूर करे के खातिर जो भी कीटनाशक हैं रसायन हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे रोग बीमारी हर तरह से न लागे। तो हम कहें कीटनाशक के जो प्रयोग बा उसका संतुलित और सुरक्षित प्रयोग कैसे किया जाए, आज के बिना जानकारी दे के खातिर अपने बीच में डॉक्टर निशी सेवक जी हैं। आप एविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज के जंतु विज्ञान विभाग भैया सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों के लिए जानब कि जो भी कीटनाशक बा खेती किसानी में कर कैसे उपयोग बाटे, थोड़ा एक बारे में बताएं
4: जी। रसायनों का असावधान उपयोग पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों को ही नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए रासायनिक कीटनाशकों के संतुलित और सुरक्षित उपयोग के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाज़ार में कई प्रकार के कीटनाशक बेचे जाते हैं, तो ऐसे में किसानों को फसल और कीट के अनुसार ही दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। स्थिति में हमेशा कृषि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर लें और तभी कीटनाशक को खरीदें। दूसरी बात, कीटनाशक दवाएँ खरीदते समय उसकी पैकिंग और वैधता का समय और जांच पर रख लें, और ख़रीदने के बाद दुकानदार से पक्की रसीद यानी बिल भी बनवाएं, जिससे हानि की संभावना में कवरेज भी मिल सके अगर हानि बाद में हो सके।
3: अच्छा, बिल्कुल ये बात तो सही बताएं कि चाहे जो भी कीट नशाए को बिना जांचे परखे का नहीं ले बटे। अभी बताएं, जब भी कोई भी किसान अपन खेत में कीटनाशक के अगर प्रयोग करे जात बा तो ओकर जौन उचित मात्रा बा ओकर कैसे चयन कराए, साथ ही साथ प्रयोग के समय और भाई निजी सुरक्षा भी बार व्यक्तिगत सुरक्षा के जो ना है वो कौन सा साधन अपना उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए
4: जी। देखिए, कीटनाशक का उपयोग करते समय उचित विधि और मात्रा का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञानियों द्वारा सिफारिशित मात्रा और समयांतर का पालन जरूर करें।

0: ध्यान दें कि अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण और सभी प्राणियों को हानि पहुंचा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दूसरा, मात्रा उसमें लिखी रहती है, इस बात का ध्यान रखें, पर्चे को अच्छे से पढ़ें, और जब कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इस्तेमाल करते हैं और खास तौर से जब उसका भंडारण करते हैं, तो बूढ़े, बच्चे, पशु, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इन सब की पहुंच से दूर रखें। सबसे अच्छा रहता है कि आप कहीं अलग दूसरे कमरे में बंद करके उनका भंडारण करें, तभी ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। दूसरी
1: बिल्कुल
0: बात, कीटनाशकों के छिड़काव से पहले उपकरणों को जो आप इस्तेमाल में लाएंगे उसको आप ज़रूर देख लें कि कहीं से टूटे फूटे ना हो, लीकेज की जांच कर लेनी चाहिए, और भूल कर भी उपकरणों या कीटनाशकों को सीधा त्वचा के संपर्क में ना आने दें। कीटनाशकों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों का भी उपयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे हाथ ग्लव्स पहनना चाहिए, हैंड ग्लव्स, और चेहरे का मुखौटा, शरीर के संरक्षण के लिए सूट या फिर पूरी बाही के कपड़े, नेत्र धारण और श्वासकोशीय आरक्षण का उपयोग जरूर करें। साथ ही पानी की पर्याप्त मात्रा रखें, साबुन और तौलिए की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। दूसरी बात ये कि किसी न किसी को आप ज़रूर सूचित कर दें, छिड़काव से पहले पड़ोसी को सूचित कर दें या किसी को कि मतलब आज हम छिड़काव कर रहे हैं, ताकि उनको भी जानकारी रहे। और ये ध्यान रखें कि त्वचा, आंख और मुंह को कीटनाशक के संपर्क में आने से ज़रूर से बचाएं, इससे आपको कीटनाशकों से होने वाली संपर्क से सुरक्षा मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल एक बात ये बताऊं कि जब भी हम एकर उपयोग करते हैं खास करके कोनो भी उपकरण के माध्यम से तो हमें का विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
0: जी हाँ, ये कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद आपने जो भी उपकरण लिए हैं, और दवा की बोतल है और डिब्बे हैं या आपने ड्रम लिए हैं, उन सब को जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप उनको तोड़कर और या फिर मिट्टी में दबा दें या फिर तोड़कर फेंक दें। उसको बहुत से लोग धो के इस्तेमाल करने लगते हैं दूसरी चीज़ों में, तो ये बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बहुत ही घातक हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप उसको उपयोग ये कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रख किसान भाई का सबसे पहला ये उद्देश्य रहता है कि अच्छे से छिड़काव हुए, कीटनाशक सारे पेड़ों पे, हर पत्ती पे, कोने कोने पहुंचे। तो उसके लिए मैं एक खास बात ये बताना चाहती हूँ कि माइक्रो साइज नोजल स्प्रे का आप छिड़काव करें, उसके उसकी लिए ही आप ज़्यादा वो करें, क्योंकि ये जो माइक्रो साइज नोजल होते हैं वो बहुत अच्छे से कीटनाशकों को चारों तरफ, हर एक कोने पे, पत्ती पे, पेड़ों पे, नीचे तक पहुंचाते हैं, और उससे उसका फैलाव बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि बहुत से किसान भाई चिपको का इस्तेमाल करते हैं रसायनों के साथ, ताकि उसका भी फैलाव बहुत अच्छा रहे। तो आप, मेरा ये कहना है कि जो ये माइक्रो साइज नोजल का आप चयन करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। चिपको, जो अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो उसको उस समय आपको चिपको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, कीटनाशक का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और उचित प्रेषित तकनीक का पालन करें, जिसमें सबसे अच्छा रहता है छिड़काव तकनीक।
1: जी।
0: दूसरा, और मैं बताना चाहती हूँ कि समय अनुसार प्रेषण करें, जैसे कीटनाशकों का उपयोग करने का सही समय चुनें।
1: बिल्कुल ही सही बात कहें कि हमारे किसान भाई देखा था कि हमारे पास अगर कृषि यंत्र आ गया भाई जैसे ओकर समय के उपयोगिता रहे तुरंत अपन जल्दी से जल्दी तेमा ये होता कि भाई या तो सुबह या शाम या हवा की स्थिति देख के किया जाता तो का हमारे विशेष बात का ध्यान रखे बात थोड़ा ओका बारे में बताऊँ।
0: देखिए, उपयोग के समय कीटनाशक लेबल पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी, जैसे कि समय, तापमान और निर्धारित मात्रा, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इनका छिड़काव भी हवा वाली दिशा में ही करना चाहिए, जिससे छिड़काव करने वाले के ऊपर स्प्रे की छींटे ना पड़ें। दूसरा, फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के समय सुबह या शाम का समय सबसे उपयुक्त बताया जाता है, क्योंकि इस समय हवा का प्रभाव कम होता है फसलों में। दूसरी बात, फसलों से कम ऊंचाई पर नोजल रखकर स्प्रे करें, ताकि इधर उधर जो है ना उड़े रसायन और हवा में ना फैले, और कीट रोग से ग्रस्त पौधों पर ही आप ज़रूर से स्प्रे करें। इसके अलावा दिन के समय मैं बताना चाहती हूँ, मधुमक्खियों की गतिविधियाँ फसलों पर बहुत ज़्यादा होती है, और उस जो फसलों के परागण

0: में बहुत ज्यादा मदद करती हैं, इसलिए दिन में भूलकर भी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहीं देखा जो भी किसान भाई अपन कीटनाशक के प्रयोग कर चुका है तो ओके बाद जौना है का विशेष का ध्यान रखे बा, सा खास करके वायुमंडल के जो स्थिति बाटे वो हमार काम ध्यान दे के जरूरत है।
0: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं बारिश के मौसम की, तो बारिश के समय कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, बल्कि ना ही करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो प्रभाव कम हो जाता है और प्रणाली के बाहर भ्रमण कर सकता है, करने के ज़्यादा
1: बिल्कुल
0: वो रहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसलिए बारिश के समय कीटनाशकों का छिड़काव ना ही करें तो बेहतर होता है।
1: तो जैसे छिड़काव आदमी अपन किसान भाई कई ले आए अपने खेत में तो उसके बाद का सावधानी बरतें उसके बारे में थोड़ा बताओ।
0: जी देखिए, छिड़काव कर लिया उसके बाद जो है हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे किसान हो या मजदूर हो, तो सबसे पहले उनको अपने हाथ पैर साफ कर लेने चाहिए, नहा धो लेना चाहिए, कपड़े अपने बदल लेने चाहिए, क्योंकि इससे रसायनों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है सेहत पे।
1: जी।
0: दूसरा, छिड़काव वाले उपकरणों को भी 3 से 4 बार पानी से साफ धुलाई करना चाहिए, और उसको सिर्फ छिड़काव के लिए ही अलग रखना चाहिए, धोने के बाद भी उसको आप छिड़काव में ही इस्तेमाल लाएं और दूसरे अन्य किसी भी कार्य के लिए उसको इस्तेमाल ना करें। और किसान भाई को भी अपने कपड़े वगैरह सब बदल के धो के और ये सब ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल देखा जाते भाई तमाम तरह के सावधानी का प्रयोग करे के बाद भी ये होता कि देखा जाता है जो किसान भाई यहाँ कहूँ कहूँ असावधानी हो जाता है तो जो रसायन बाटे या कीटनाशक बाटे उनके शरीर से स्पर्श हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी बाटे कि अगर कीटनाशक के संपर्क में अगर आ गया है तो उस समय अपन जो किसान भाई यहाँ वो क्या करें।
0: जी देखिए, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि छिड़काव करते समय कीटनाशक गलती से मुंह में चला गया या आँख में, नाक में चला गया। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना है, और 1 गिलास गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे और उल्टी करनी चाहिए। दूसरी बात, गलती से भी कीटनाशक अगर ज़्यादा सूंघ लिया है तो तुरंत खुली हवा में जाकर घूमें और शरीर से कपड़ों को ढीला कर लें, और जिससे कि घुटन ना हो।
1: बिल्कुल
0: तुरंत कोई खुशबूदार चीज़ तोड़कर सूंघने से भी आराम मिलता है। कीटनाशक के संपर्क में आने के बाद अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो पेट के सहारे लेटकर बाहों को सामने की ओर फैला दें। रोगग्रस्त जो भी किसान है या मजदूर है, तो उसकी पीठ को हल्के से सहलाएं और उसे सांस दिलाने में मदद करें। और अगर मान लीजिए भूल से यदि विष प्रारंभिक अवस्था में पेट में ही हो, तो मरीज को उल्टी कराएं, खाली पेट में 1 या 2 चम्मच नमक आधे गिलास पानी के साथ दें, गले में उंगली डालकर उल्टी तब तक करवाते रहें जब तक वो खुद से मतलब कंफर्टेबल ना उसको
1: बिल्कुल
0: हो, तब तक आप उसको कराएं। और
1: कहे मतलब यह है कि वो जब तक जो भी किसान है अगर गलती से होकर कीटनाशक चला गया बा और यह तरह के जो विधि बाटे का अपनाए जब तक उका अपने से ही न महसूस हो लगा कि हम का आराम बा तब तक उका जो है जबरदस्ती उसके साथ कुछ न किया जाए जो ना।
0: जी हाँ, और दूसरा कि कीटनाशक का सीधा संपर्क अगर त्वचा से हुआ है, तो तुरंत साबुन से हाथ पैर धोएं और फिर उसके बाद अल्कोहल से धोएं। और यदि कीटनाशक का संपर्क आँख से हो, तो उसे साफ पानी से धोएं, किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावधानी रखनी है, और रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव के बाद सेहत से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या अगर दिखती है, तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, उससे संपर्क करें, जिससे समय रहते समाधान किया जा सके।
1: बिल्कुल। तो और कोनो अगर विशेष बात कोनो संदेश है कीटनाशक का प्रयोग के संबंध में तो भी किसान भाई को बताऊं।
0: यही संदेश में, सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी है। कीट और बहुत से किसान भाई इसको बहुत हल्के में लेते हैं, रासायनिक छिड़काव को बहुत साधारण तौर से लेते हैं, लेकिन इसको नहीं लेना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि खुले हाथों से इस्तेमाल किया जाता है, ये ना करें। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि पेड़ों पे कीट भी लगते हैं और रोग भी लगते हैं, और दोनों ही आते हैं, कीटनाशक भी आते हैं और ये रोग को मारने वाली दवाएं भी आती हैं। तो दोनों का कभी कभी किसान भाई सोचते हैं कि हम मिला के इनका प्रयोग कर दें, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही फॉर्मुलेशन

0: ही अलग होता है, दोनों का ही दवाइयाँ अलग होती हैं, जो चीज़ें
1: प्रभाव
0: इस्तेमाल
1: भी
0: की
1: अलग
0: जाती
1: अलग
0: हैं,
1: होता
0: और
1: है।
0: प्रभाव, जी हाँ प्रभाव भी बिल्कुल अलग होता है। तो अलग अलग इनको हमें छिड़काव करना है, साथ में मिला के कभी भी रोग और कीट को नहीं साथ में निवारण हो सकता है। तो आप इसका ध्यान रखें, और ये मैं सावधानियां बहुत ज़्यादा इस, और इनका प्रभाव भी नहीं होता अगर आप मिला देंगे तो इनका प्रभाव। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि पेड़ को अच्छा उगाने वाली जो दवाइयां आती हैं उनको भी उसमें डाल देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। सबका अपना एक अलग समय होता है, और इस उसी हिसाब से इसको करना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखा इतना बढ़िया बढ़िया बात बताएं किसान भाई। देखा जो कीटनाशक बांटे उसका प्रयोग में भाई, सबसे पहली बात थी बांटे भाई अपने जो कृषि वैज्ञानिक भैया आ रहे हैं, फसल और के हिसाब से और रोग के हिसाब से उसका उचित मात्रा का चयन करें। साथे साथे एक जो प्रयोग के समय बांटे सुबह और शाम के भाई समय अपनावें, और साथ में अगर एक चपेट में आ गया है तो उसका जो भी सुरक्षित तरीका बा उसका अपनाए के अपन जो कीटनाशक के प्रयोग करके अपन फसल के रोग बीमारी दूर कर सकते हैं। निश्चय रूप से जो जानकारी बांटे हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभप्रद होए। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
1: हाँ
2: भैया
1: भैया।
2: घनश्याम, हम कही देखा ही जो उनमें बात बात कही किसान भाई सुनन, कीटनाशक प्रयोग सावधानी पे डॉक्टर निश्चय सेवक से प्रवीण कुमार मिश्र के
0: बहुत
2: सुनन
0: अच्छा,
2: तो गुण नहीं भाई, वही हिसाब से काम करें तो ठीक रहे। अब देखा समय समय स्कूल निकल के चले कि बेला होगी तो पंचन से आज्ञा ले जाए, तो पंचो
0: राम
2: राम
0: राम।
2: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है।
1: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई

0: सी द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
2: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य सचिव SP गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
4: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई, बाकी पंचायत घर, सचिवालय, RRC सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंक रोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को

0: गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रोफेसर देवदत्त सरोड़े की वार्ता, संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय भावना।
3: संस्कृत वाङ्मये राष्ट्रम्। वेदादारभ्य अर्वाचीन संस्कृतं यावत् ज्ञान विज्ञान भरितं विपुलं वैविध्य गुणोपेतं संस्कृत वाङ्मयं विलसति। मानव सभ्यताया भव्यं दिव्यं लोकहितं सार्वजनिनं सार्वभौम स्वरूपमात्रं दृग्गोचरी भवति। अद्य तावत् संस्कृत वाङ्मये राष्ट्रम् इति अमुं विषयम् अभिलक्ष्य किञ्चित् प्रस्तौमि। सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलम् अर्थः, अर्थस्य मूलम् राज्यम् इति चाणक्येन स्वीय चाणक्यनीतौ सूत्ररूपेण उपनिष्टम्। सर्वः लोकः सुखं कामयते, प्रतिप्राणी सुखमिच्छति। सुखं तु धर्ममन्त्रेण न सम्भवति। धर्मस्य मूलम् अर्थो विद्यते, अर्थस्य मूलम् राज्यमस्ति। अतः राज्यं परिपालनीयं, संवर्धनीयं, कुशलप्रशासकमन्त्रेण नैतत् सुशकम्। एतद् राज्यं चिरकालात् स्वीयगुणगणै रीतिनीतिभिः इतिहासपरम्परादिभिः दर्शनज्ञानविज्ञाने महापुरुषाणां मानवीयमूल्यैः सदाचारादिभिः धर्मकर्मभिः पार्थिवभूभागेन जीवत् परिस्पन्दमानं सर्वत्र राजते प्रकाशते इति राष्ट्रम्। राष्ट्रशब्दस्य व्युत्पत्ति राजते इति राष्ट्रं राजरिदीप्तौ इति एतस्मात् धातो सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् इति औणादिके ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति राष्ट्रम् इति पदं निष्पद्यते। अस्य अर्थो विद्यते देशः, विषयो जनपदः इति। अधुना एतद् विजानीमहे राष्ट्रस्य कानु खलु परिभाषा इति। आधुनिकविचारकः राष्ट्रस्य मूलभूतानि तत्त्वानि, वैशिष्ट्यानि वा समानधर्मिता, समानभाषिकता च इति आमनन्ति। परं नैषा निर्दुष्टा परिभाषा, यतः एषा परिभाषा नैकप्रसङ्गे खण्डिता, न युक्तिसङ्गता इति प्रत्यभात्। एषा तु राष्ट्रस्य सर्वसङ्कीर्णा परिभाषा।

0: राष्ट्रस्य रक्षणम् अतीव महत्पूर्णं भवति. उच्यते च शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते इति. संरक्षते सति राष्ट्रे सर्वज्ञानविज्ञानविद्याकलासाहित्यसङ्गीतादिवैभवनिचय समृद्धि आप्नोति. धैर्येण धर्मेण प्रसादेन प्रतापेन वीर्येण विक्रमेण विभवेन च समलङ्क्रियते राष्ट्रं. राष्ट्रे सत्येव विद्याविलासधिया सुधिय स्वाध्यायशिला सदाचारेण ब्रह्मचारेण पटवो भटो शास्त्रोपस्कृतः कृतः शिष्यचित्तहरा शब्दसुन्दरगिरः गुरुव धर्मोपदेशप्रचारका विचारका विनयशीलवन्तः सन्तः तत्त्वदर्शिनो ज्ञानिनो निरभिमानिनो दानिनः सत्यानुसन्धानमानसा वैज्ञानिक सत्यः सत्यवत्यो युवत्योः प्रतिव्रतः योषितः देशदेशान्तरेषु प्रसृता गूढचराः नयविशारदाः सुखसौविध्यदायका नायकः संयमधनः युवानः सभ्या संस्कारवन्तो धैर्यधीरा वीराश्चजायन्ते. अतः उपदिश्यते ऋग्वेदे राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. अन्ते वच्मि राष्ट्रजागरणे पुरोहितस्य अतीव महत्त्वपूर्णं कर्तव्यम्. उच्यते च यजुर्वेदे वाजस्य इमं प्रसव स्वशवेऽग्रे सोमं राजानम् ओषधिष्वप्सु ता अस्मभ्यं मधुमतिर्भवन्तु वयं राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिता स्वाहा. इत्थम् अस्माभिः विदितं यत् संस्कृतवाङ्मये राष्ट्रमधिकृत्य विपुलं वर्णनं विद्यते इति. ॐ शम.
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर देवदत्त सरोड़े की वार्ता संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय भावना. हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं. अब प्रस्तुत है सुगम संगीत. इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शिवानी केसरवानी. लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए कबीर दास का ये भजन.

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में शिवानी केसरवानी के स्वर में सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अब लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म गदर 2 के इस गीत के साथ। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन की।

लीजिए आप सुनिए फिल्म प्यासा सावन में लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को। गीत है संतोष आनंद का, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोज़ा में चित्रा और SP बाल सुब्रमण्यम को, और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए सबरस। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल।

आबिदा परवीन की गाए सूफी गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगे। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल

0: के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
3: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
3: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया।

जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण

0: से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली

स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सरपंचन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद CBSE पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम CBSE ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। CBSE ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज़्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज़्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया है कि 16,000 से ज़्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। CBSE का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी CBSE में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरूरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुदकफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है।

0: जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
1: भारत सरकार जनजातियों समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौक़े, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे वसअत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज़ हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्याद के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख़वातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर ख़वातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख़वातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरक बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो, उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इक्तसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकलो हमल के महकमों के वज़रा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज़ ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क़याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत ख़त्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों, 2026 को

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। और अब पेश खिदमत है गजलों का कहकशां। दोस्तों, गजलों की अगर हम बात करें तो जैसे जीवन की कोई कड़ी है, कोई हिस्सा टूट के बिखर गया और हम उसे बहुत नाजुक लफ्ज़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी के कुछ पैमाने छलक से गए हैं और हम उसे पूरी शिद्दत से जी नहीं पाए, कुछ अधूरापन कशिश बाकी रह गई हो। ज़िंदगी के वही अधूरे एहसास जब कुछ लफ्ज़ों में सिमट जाते हैं तो गज़ल बन जाती है। तो आइए जिंदगी के पैमाने से छलकते इन्हीं रंगों को देखते हैं, सुनते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी है वसल की राहत से सिवा।

रोमान के बगैर ज़िंदगी कितनी खाली खाली सी होती है, इसका अंदाज़ा तो आप सबको होगा ही। रोमान चाहे कायनात के हरे भरे खूबसूरत मनाजिर का हो या इंसानों के दरमियान नाजुक व पेचीदा रिश्तों का, इन्हीं से ज़िंदगी की रौनक मरबूत है। हम सब जिंदगी की सफाक सूरतों से बच निकलने के लिए रोमानी लम्हों की तलाश में रहते हैं। तो आइए, हमारा ये शेरी इंतखाब एक ऐसा निगारखाना है जहाँ हर तरफ रोमान बिखरा पड़ा है। तुम जब जाओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में

किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है, जिस रमज का मारा हुआ जेहन मुजदाए इशरत ए अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।

तारुफ रोग हो जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।

कशिश नहीं है तुम्हारे बिना बहारों में, ये छत ये चांद सितारे उदास लगते हैं, चमन का रंग नसीम सहर गुलाब की फूल, नहीं हो तुम तो ये सारे उदास लगते हैं। खबर सुनी है कभी जब तुम्हारे आने की, मैं आईने में दुल्हन बन के मुस्कुराई हूँ, गई हूँ दामने दिल को खुशी से भरने, मगर जहान भर की उदासी समेट लाई हूँ।

फिर कोई आया, दिलेजार नहीं कोई नहीं, राह होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदास चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक रहगुजर, अजनबी खाक ने धुंधला दिए।

फिर कोई आया दिलेजार नहीं कोई नहीं, राह होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदस चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक रह गुजर, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम्मे बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुखफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन।
2: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है, यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है, और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ।
3: धन्यवाद।
2: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
3: आपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको, और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
2: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी, आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
4: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
2: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का, वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
3: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले।

इसी गजल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए, हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए। उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएं। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में, ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाला मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
1: जी बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है, डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे भी।
1: चलिए तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलिए जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं अगर अपने खेल के अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और 2 थर्ड, मतलब 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं, तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और 2 थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए जिनका मेडल आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें, और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं।

0: है जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहाँ एक अच्छा पैसा मिलता है उनको, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपने टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए चूंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वाच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से उसके शौक उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिस पे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था, परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था, तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे देख के बड़ा अच्छा लगता था, उनकी शरीर देख के तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है 6वीं 7वीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं 8वीं 9वीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी खाली थी वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे, तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी अच्छी हो रही थी और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए, फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए, तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ और 1 साल तो

0: तो मैं बिल्कुल गांव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए। उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ, तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, बेसिक जो है, कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको वो किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहाँ पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाएं जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हों, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए, जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में वो मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर, और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं, और इसी स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज, जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है, उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि 5वीं तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है। जो आप चीज़ें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, विशेष करके छोटे शहरों और गाँव में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले, तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
0: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र में, तो बकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फॉर्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है, वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये

0: फार्म गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फार्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहाँ से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, वो शुल्क दे के आप उस फार्म को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज़ स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीज़ें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है। आपको वो सारी जानकारियाँ वहाँ से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहाँ तक जाना होगा।
1: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय
0: जी
1: और जो स्थानीय केंद्र हैं
0: जी
1: उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं
0: जी
1: वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
1: ये चुनौती
2: जी
1: बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
0: ग्रेपलिंग रेसलिंग जैसे नाम दिया गया है इसको, ग्रेपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज कि किसी भी देश में जो भी ग्रेपलिंग की फेडरेशन होगी उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रेपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन, और फ्री स्टाइल उसके बाद ग्रेपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रेपलिंग रेसलिंग में, ग्रेपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रेपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है, और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रेपलिंग रेसलिंग है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रेपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें

0: मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रेपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफ़ी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफार्म। है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी, बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा संजय जी, कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है। आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए। आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है। खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
2: धन्यवाद सर।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्यस्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन, राग है हमीर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित नारायण राव व्यास का ख्याल गायन राग था हमीर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अनुरोध करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board exam.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत